मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आप सभी का रेडियो साथी सैकत चटर्जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आज है दिन सोमवार, अंग्रेजी सन ईस्वी 2026 की मई माह की 11 तारीख, तदनुसार शक संबत 1948 की, वैशाख माह की 21वीं तारीख। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

दोस्तों ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर

0: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वे नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इखलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। इससे पहले आप हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे हिंदी समाचार। आइए अब आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से जुड़कर बातें करते हैं खेत खलिहानों की, किसान भाइयों की। सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है औषधीय पौधों की खेती। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी सुनीता अग्रवाल का है।

खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे औषधीय पौधे की खेती और उनसे होने वाले लाभ पर। हमारे देश के अधिकांश किसान पारंपरिक फसलों के उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अपने खेतों में गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सरसों, मूंगफली इत्यादि की बुआई करते हैं, जबकि औषधीय फसलों में सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमे, कौन, शतावरी, तुलसी, एलोवेरा वृक्ष, लेमन ग्रास, अकरकरा, सहजन इत्यादि प्रमुख हैं। इनकी खेती पर उतने ध्यान नहीं देते हैं। श्रोताओं, यहाँ पर हम बता दें कि परंपरागत फसलों की खेती की तुलना में औषधीय पौधों की खेती

0: से एक हेक्टेयर में किसानों को ज़्यादा आमदनी प्राप्त होती है। खेतों में कई सालों तक एक ही तरह की फसल उगाने से पैदावार क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में खेत में फसल विविधता के लिए औषधीय खेती करने की सलाह कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से दी जाती है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि खेत को एक ही तरह की फसल लेने से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। ऐसे में किसानों को फसल विविधता के लिए सलाह दी जाती है। फसल विविधता के इस क्रम में यदि गेहूं और धान की खेती को खाली होने के बाद यदि किसान उसमें औषधीय पौधों की खेती करेंगे तो यह उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगली बार जब वे उसमें धान और गेहूं उगाएंगे तो उनकी पैदावार पहले की अपेक्षा अधिक होगी। देश दुनिया में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसान परंपरागत खेती के अलावा औषधीय और जड़ी बूटियों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाला समय हर्बल उत्पादों का ही होगा। सरकार की तरफ से भी पारंपरिक फसलों की जगह अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्रीय और राज्य सरकारें आयुर्वेद में दवा बनाने में होने वाले प्रयोग औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने और किसान की आय दुगुनी करने के उद्देश्य से सरकार देश में औषधीय पौधों की खेती पर जोर दे रही है। इसके लिए कई अभियान की भी शुरुआत की गई है। आमजन एवं किसानों को औषधीय पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस कड़ी में पौधे लगाने के लिए बीते दिनों औषधीय पौधों को भी वितरित किया जा रहा है, जिससे काफ़ी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने देश भर में जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहित देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत देश भर में अगले एक वर्ष में 75,000 हेक्टेयर रकबे में जड़ी बूटियों की खेती की जाएगी और औषधीय पौधों की खेती से किसानों को कई प्रकार से लाभ होते हैं, जैसे कि औषधीय पौधों की खेती में लागत अन्य फसलों की तुलना में कम आती है। औषधीय खेती में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का खतरा कम हो जाता है। नीलगाय इन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जड़ी बूटियों की खेती किसानों को आय का बड़ा स्रोत बन सकता है। औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित कर देश को आत्मनिर्भर तो बनाया ही जा सकता है, साथ ही इसके निर्यात कर भी देश की आय में वृद्धि हो सकती है। भारत औषधीय पौधे का कच्चा उत्पादन 60-70% तक निर्यात करता है और इसका बाजार $120 मिलियन तक का है। इसका बड़ा बाजार तथा अधिक मूल्य के कारण किसानों को इसकी खेती के लिए हमेशा ही प्रोत्साहित किया जाता है और लाभदायक भी साबित हुआ है। कुछ औषधीय पौधे महंगे होने की वजह से सभी किसान इसकी खेती नहीं कर पाते। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत किसान सब्सिडी पर औषधीय पौधों की खेती कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और राष्ट्रीय औषधीय मिशन के तहत आती है। किसानों को इसका लाभ अधिक से अधिक जरूर उठाना चाहिए। और आज की जानकारी यहीं तक।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। संकलन एवं वाचन सर सुनीता अग्रवाल का था। आपने सुना औषधीय पौधों की खेती कर कैसे लाभ कमाया जा सकता है और ये दूरदर्शी सोच कैसे साबित हो सकती है। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं रामचरित मानस गान से और सुनते हैं रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 104।

पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख ध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम रामचरितमानस गान। आइए अब जुड़ते हैं कार्यक्रम चिंतन से और सुनते हैं अति सर्वत्र वर्जित। आलेख एवं वाचन स्वर रेडियो साथी निर्मला।

विद्वान जनों ने सब कामों में अति का विरोध किया है, उसे गलत ठहराया है। भगवान बुद्ध ने मध्यम भाग यानी मध्यम मार्ग का आचरण करने के लिए सर्वसाधारण को उपदेश दिया है। बहुत तेज दौड़ने वाले

जल्दी थक जाते हैं और बहुत धीरे चलने वाले अविष्ट लक्ष्य तक पहुंचने से पहले पिछड़ जाते हैं। जो मध्यम गति से चलते हैं वह बिना थके बिना पिछड़े उचित समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। हाथी जब किसी नदी को पार करता है तो अपना हर एक कदम बड़ी सावधानी से रखता है, आगे की जमीन को टटोल कर उस पर एक पैर जमाता है। जब वह देख लेता है कि कोई खतरा नहीं है तो उस पर बोझ रख कर पिछले पैरों को हटाता है। इस गतिविधि से वह उस भारी काम को पूर्ण कर लेता है। यदि वह जल्दबाजी करे तो गहरे पानी में डूब सकता है, किसी दलदल में फंस सकता है या किसी गड्ढे में औंधे मुंह गिरकर प्राण गंवा सकता है। साथ ही यदि वह कदम बढ़ाने का साहस ही ना करे, पानी की विस्तृत धारा को देखकर डर जाए और नदी पार ही ना करे तो फिर वह कभी नदी पार नहीं कर सकता है। हाथी बुद्धिमान प्राणी है, वह अपने शरीर के भारी भरकम डेढ़ डॉल का ध्यान रखता है। नदी पार करने की आवश्यकता के अनुभव पर वह पानी के फैलाव को समझता है और पार करते समय आने वाले खतरों को भी समझता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वह अपना कार्य गंभीरतापूर्वक पूर्ण कर लेता है और जैसे ही उसे खतरा दिखता है वह अपना पैर पीछे हटा लेता है और फिर दूसरी जगह से रास्ता तलाश लेता है। मनुष्य को भी हाथी की सी ही बुद्धिमानी सीखनी चाहिए। अपने कार्यों में मध्यम गति से ही उसे आगे बढ़ना चाहिए। विद्यार्थी कितने ही उतावलेपन करें लेकिन एक दो महीने में अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। यदि कर भी लें तो जल्दी भूल जाएंगे। क्रम क्रम से नियत काल में पूरी की हुई शिक्षा ही मस्तिष्क में सुस्थिर रहती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी वृक्ष ये सभी अपने नियत अवधि में ही परिपक्व होते हैं, फल देने लायक होते हैं और नियत समय पर ही वृद्ध होते हैं। यदि उस नियत गतिविधि में जल्दबाजी की जाए तो परिणाम बुरा होता है। हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता मनोभूमि परिस्थिति इन सभी बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। बहुत अधिक खाना यह भी सही नहीं है और बिल्कुल ना खाना यह भी सही नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अति बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी चीज की अति बुरा ही है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझ कर काम करना चाहिए। यही हमारे संतजन कहते हैं, हमारे बड़े और शास्त्रों में भी यही बात बताई गई है। कहीं ऐसी छलांग न लगा दी जाए कि गिरकर अपने ही पैर तोड़ लिए जाए, उतावलेपन में काम बिगड़ जाता है। इसलिए धैर्यपूर्ण सही समय का इंतजार करते हुए कार्य करना चाहिए और अति से बचना चाहिए।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आइए अब जुड़ते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना से। दोस्तों आराधना की आज की कलाकार हैं तृप्ति शाक्या।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रसारित भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज की हमारी कलाकार हैं तृप्ति शाक्या।

कार्यक्रम आराधना आगे भी जारी रहेगा दोस्तों। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। आइए फिर से एक बार सुनते हैं इसी कड़ी में तृप्ति शाकिया को।

0: आइए दोस्तों, आराधना के बाद अब बात करते हैं स्वास्थ्य की और सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। भेंटवार्ता का विषय है अस्थमा, कारण एवं उपचार। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय।
1: बढ़ते वायु प्रदूषण के दौर में अस्थमा हमें किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बातचीत करेंगे छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय से। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार, जोहार। अस्थमा भी एक फेफड़े या श्वास नली की बीमारी है और कोविड भी अधिकतर लोगों का फेफड़ा या श्वास नली में असर किया था। तो जो लोग पहले से अस्थमा से ग्रसित थे, कोविड के बाद उनके अस्थमा के सिम्टम्स में बढ़ोतरी आई है और अचानक सिम्टम बढ़ जाना या अस्थमा का अटैक आने, दौरा पड़ना में भी बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा क्योंकि कोई नई तरह की कीटाणु से इन्फेक्शन के बाद शरीर में एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग जिनको पहले से उनमें या उनके खानदान में अस्थमा नहीं थे, कोविड के बाद उनमें अस्थमा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
1: ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोविड नहीं हुआ हो, वो भी अस्थमा से पीड़ित हैं। तो क्या कारण है वर्तमान समय में अस्थमा होने का और हम अपने आप को बचाव किस प्रकार करें?
2: श्रोताओं को मैं एक सीधी बात समझाना चाहता हूँ कि अस्थमा मूलतः सांस नली में एलर्जी को बोलते हैं। ये धूल धुआं, वायु, बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। कहीं ना कहीं आज के समय में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन भी अस्थमा के अटैक ऐसे लोगों में करा रहे हैं जिनको पहले खानदानी अस्थमा नहीं थी या जिनको पहले अस्थमा की समस्याएं न थी।
1: क्या लक्षण है कि हमें पता चले कि हम अस्थमा से पीड़ित हो गए हैं और इसका हम उपचार शुरू कर दें?
2: अस्थमा के लक्षण पहचानना बहुत आसान है और जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज के बाद आप लोग भी अस्थमा के लक्षण को पहचान सकेंगे। शरीर में एलर्जी का कुछ और प्रकोप हो सकता है, जैसे कहीं त्वचा में खुजली या दाना होना, छींक आना, नाक से पानी बहना। उसके अलावा अस्थमा के लक्षण होते हैं अचानक से खांसी शुरू होना, सूखी खांसी जो रुकने का नाम नहीं लेता हो, सांस फूलना, छाती में जकड़न तथा छाती से सीटी की आवाज़ सुनाई देना। अगर आपको किसी भी इंसान में ये लक्षण दिखे तो आपको अस्थमा के बारे में शक करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी जटिल या आसानी से नहीं मिलने वाली जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल यही लक्षण अपने आप में काफ़ी है इसको बीमारी साबित करने के लिए।
1: किसी किसी को किसी खास समय इस तरह का अटैक दिखाई पड़ता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय इस तरह की परेशानियां दिखती है, और किसी किसी व्यक्ति को किसी खास खाद्य पदार्थ से या किसी खास पौधे से या किसी अन्य तरह की चीज़ों से भी अस्थमा होती है, तो इसका बचाव किस प्रकार किया जाए?
2: हमारे राज्य झारखंड तथा हमारा प्रखंड रांची में कुछ कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। तो इनके पोलन से ऐसे लोग जो पहले कभी झारखंड या रांची में नहीं रहे हो, वो आने से उनको भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो जब भी मौसम बदलता है, नमी में बदलाव आती है, तापमान में बदलाव आती है, तो जिन लोगों को पहले से अस्थमा के बारे में पता है, मौसम बदलते समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए, जगह परिवर्तन के समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि दिन के समय के साथ भी लक्षण में रोकथाम होता है कि सुबह सिम्टम ज़्यादा होता है या रात में सिम्टम ज़्यादा होता है, तो उनको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सावधानी ही बचाव है।
1: डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात करें तो खान पान में किन किन चीज़ों का हम सेवन नहीं करें ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें?
2: अगर मरीज को पता चलता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ के सेवन से उनके गले में खुजली हो जाए या ओठों में सूजन आ जाए या तुरंत खांसी चालू हो जाए, मतलब उन खाद्य पदार्थ से उस व्यक्ति को एलर्जी है, तो उनको जान के उस खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, अंडे का प्रोटीन, दूध, कई तरह के मूंगफली, बादाम, इनसे कभी कभी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा मैं एक बहुत डिबेटेबल बात बताना चाहूँगा कि पहले हर फल का एक मौसम होता था, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद हर फल हर मौसम में मिलता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़खानी भी अस्थमा या एलर्जी का सिम्टम को बढ़ा रहा है। तो जो फल जिस मौसम में पाया जाता था, ये प्रकृति का नियम है, कृपया उस फल का सेवन उसी मौसम में करिए। अगर आप उस फल के काफ़ी शौकीन हैं और दूसरे मौसम में आपको फल मिल भी रहा है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं, लेकिन निरंतर नहीं। ये सब भी मुसीबत को बढ़ा सकती है।
1: बचाव हम किस प्रकार करें? किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसके मन में ये भ्रांतियाँ फैल जाती है कि हमें अब हमेशा दवाइयाँ या इन्हेलर लेने पड़ेगी। तो कितना हद तक हमें इन्हेलर लेना पड़ेगा और दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी?
2: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्हेलर से डरे नहीं। इन्हेलर केवल एक दवा पहुँचाने का जरिया होता है। जिनको अस्थमा है उनको सांस नली में परेशानी है, तो इन्हेलर केवल दवा को वहां तक तेजी से पहुंचाती है। तो इसमें कोई नशा युक्त पदार्थ नहीं है, इससे आदी होने का खतरा नहीं है। जब तक आपके चिकित्सक आपको सलाह दे तब तक आपको ये इन्हेलर लेना चाहिए। जब आपके चिकित्सक आपको बताए कि अब आप बेहतर हो गए हैं, आपके इन्हेलर हट सकती या कम हो सकती है, उनकी सलाह मान के आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन कृपया इन्हेलर

0: से डरे नहीं, ये बहुत सेफ होते हैं और ये जीवन बचाते हैं। अगर आपको अस्थमा हो तो हमेशा आप कहीं भी जा रहे हो एक इन्हेलर आपके साथ रहना चाहिए और एक इन्हेलर खत्म होने से पहले एक दूसरा इन्हेलर आपके पास हो जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं, क्या कारण है डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं? बेचारे माँ बाप परेशान रहते हैं और बच्चा हमेशा हंसता रहता है, हाँफता रहता है, छींकता रहता है।
0: ये हम चिकित्सकों के लिए की भी काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे बच्चों में अस्थमा 7-8 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल मैं खुद देख रहा हूँ 2-3-4 साल में अस्थमा होने का। शहरी बच्चों में इसका सबसे बड़ा कारण कुछ भी बोलिए वायु प्रदूषण है। तो सरकार या समाज वायु प्रदूषण के खिलाफ जितने कदम ले सकते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे नन्हे बच्चों के फेफड़े को बचाएगी, नंबर वन। दूसरा, फिर से प्रकृति से दूर होना। पहले जो पानी का सेवन किया जाता था आज के डेट में उन पानियों का सेवन नहीं होता है, कई तरह का ट्रीटेड वाटर चलती है। तो कृपया इन सब से दूर रह के जो पहले पानियों का सेवन होता था उसको करने से कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन सब बीमारियों से हम लोग बच्चों को बचा सकेंगे।
1: और दूसरी बात कि हमारा खान पान भी काफ़ी बिगड़ गया है, बाहर की चीज़ें फास्ट फूड का सेवन हम बहुत करने लग गए हैं, तो क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चे के माता पिताओं को?
0: कभी कभी मनोरंजन के लिए बाहर का खाना स्वाद चखना अच्छी बात है, जो 15 दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने घरों पर भरोसा रखिए, अपने घरों के रसोई पर भरोसा रखिए और कोशिश करिए उस घर का खाना जितना ज़्यादा खाने का, तो आपको इस तरह की कृत्रिम पदार्थों से होने वाली बीमारियों से आपको बचा के रखेगी।
1: घर का बना हुआ खाना ही खाइए, यदि घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ, आज आपने अस्थमा पर बड़ी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो, कल एक फिर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: दोस्तों, आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, अस्थमा कारण एवं उपचार। भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं अपने दिल्ली केंद्र से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ह्यः तेलङ्गाणाराज्ये प्रायः चतुश्शतोत्तरनवसहस्रकोटिरूप्यकाणाम् आधारभूतसंरचनानाम् औद्योगिकपरियोजनानाम् उद्घाटनम् शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण कृतानाम् प्रयासानाम् कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्री सोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्यसचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य सम्भावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमन्त्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मन्त्रिमण्डले भाजपादलस्य निर्वाचनप्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्यसर्वकारीयकर्मचारिणां कृते सप्तमवेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्यविषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डल दण्डाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायकदलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा घटबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिकरूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं गृहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार।
0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।

श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, आप हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे समाचार। आपने सुना संस्कृत हिंदी व अंग्रेजी समाचार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आइए जान लेते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:15 पर हम जुड़ेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश के साथ। पलाश में हमारे साथ रहेंगे इग्नेश कुमार एवं साथी और जानकी देवी एवं साथी। इन दोनों कलाकारों से हम सुनेंगे कुछ बेहतरीन नागपुरी लोकगीत। साथियों, इसके बाद 7:45 पर लोकगीतों के बाद हम जुड़ेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम से यानी कि स्वर सरिता कार्यक्रम में और हम सुनेंगे जगजीत सिंह को। दोस्तों, इसके बाद 8:00 बारी आएगी दिल्ली केंद्र से जुड़ने की, जहां से हम सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 में दिल्ली का सिलसिला जारी रहेगा और सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, जबकि 8:30 पे हम दिल्ली से जुड़ेंगे रांची केंद्र से और रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार सुन सकेंगे। इसके बाद दोस्तों, बारी आएगी उस कार्यक्रम की जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और हम सुनेंगे पुराने फिल्म गीतों पर आधारित आकाशवाणी डाल्टनगंज का खास कार्यक्रम गीत गुंजन। गीत गुंजन के बाद दोस्तों बारी आएगी जोहार पलामू कार्यक्रम का, जो प्रस्तुत किया जाएगा 9:00। इसके बाद दोस्तों 9:30 पे हम जुड़ेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से और आप सुनेंगे उमंग की कड़ी संख्या 1266। साथियों, इसके बाद 10:00 का समय निर्धारित है दिल्ली केंद्र से जुड़ने के लिए, जहां से हम सुनेंगे दिल्ली से रिले हिंदी समाचार। 10:05 पे अंग्रेजी समाचार सुनने के बाद हम 10:10 में जुड़ जाएंगे विविध भारती से और सुनेंगे कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। दोस्तों, यूं तो हम 11:00 सुनते हैं विविध भारती से प्रस्तुत कार्यक्रम रंग तरंग, लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 11:10 में हम मुंबई नहीं दिल्ली केंद्र से जुड़ेंगे और सुनेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री सोमनाथ अमृत पर्व पर राष्ट्र के नाम संबोधन। हम इसे समापन तक सुनेंगे। इसके बाद दोस्तों, जब इस कार्यक्रम का समापन होगा उसके बाद हम जारी रखेंगे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रमों को। इसके अलावा आप रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार भी सुन सकेंगे। दोस्तों, 5:30 तक यह सिलसिला चलता रहेगा। 5:30 पे हम वापस एक बार जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और सुनेंगे अपने रेडियो साथी से सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जुड़ते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश के साथ। पलाश में पहले हम सुनेंगे इग्नेश कुमार एवं साथियों के गाए कुछ लोकगीत।

ಜಗತ ಜನನೇ ಮತ ನರೇ ರೂಪೇ ನರಿ ರೂಪೇ ನರಿ ರೂಪೇ ಸತೀ ಸೀತಾ.

बड़ी मजा लगे दादा ढोल हो, ए दादा ढोल नगेरा बाजे।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे इग्नेश कुमार एवं साथियों को। कार्यक्रम का नाम है पलाश। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए पलाश कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं जानकी देवी एवं साथियों की आवाज में और कुछ लोकगीत।
1: अब सुनिए विरह रस का गीत राग जनानी झूमर में। कृष्ण के विरह में व्याकुल राधा सज धज कर अपने प्रियतम का इंतजार करती है, परंतु जब कृष्ण नहीं आते हैं तो वो बेचैन होकर अपने श्रृंगार को तोड़ देना चाहती है। स्वर है जानकी देवी और साथियों का।
2: लहली लहली तारंगे, लहली लहली तारंगे, कुसुमिता सारी भाई मोसिया के ललकारी। बस ये सब दो।

0: लोक गीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है नागपुरी लोक गीत, स्वर है जानकी देवी और साथियों का। पहले गीत में किस्म किस्म के फूलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, गेंदा, गुलाब, कचनार, जूही, बेली, कमल, केवड़ा, कनैली जैसे फूलों को देख कवि का मन आनंदित है। राग दोहरी डमकच के इस गीत को सुनिए जानकी देवी और साथियों के स्वर में।
1: धाधा की धावैया फूले, धाधा की धावैया फूले, फूल लपारा सहो, धाधा की धावैया फूले।

0: जानकी देवी और साथियों के स्वर में ही अब सुनिए एक हरिया डमकच राग पर आधारित लोकगीत। इस गीत में कवि कह रहा है, माघ महीने के आंधी तूफान और बर्फबारी ने बसंत के आगमन का संकेत दे दिया है। खिले खिले फूल, सुगंधित बयार और कोयल की कूक वातावरण को खुशनुमा बना रहे हैं।
1: आई गेलक पथल पानी, आई गेलक आंधी धुका, आई गेलक पथल पानी,

दोस्तों आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। कलाकार थे इग्नेश कुमार एवं साथी तथा जानकी देवी एवं साथी। आइए अब जुड़ते हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता से। आज के हमारे कलाकार हैं

दोस्तों आप सुन रहे थे सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के कलाकार थे जगजीत सिंह। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली और रांची केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज, प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा।

0: प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और

0: साफ हो गया है।
1: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
5: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
6: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसी

0: या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: सुजो में एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईते ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112301 0112371717 और 0112371 7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार। टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस बचाने की अपील की। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक साल तक सोना नहीं खरीदने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने रांची नगर निगम के जीआईएस आधारित एसेट मैपिंग कार्य की सराहना की। झारखंड को 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग की सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ आज होगी बैठक। लातेहार रेलवे स्टेशन पर रांची नई दिल्ली दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का हुआ शुभारंभ। स्थानीय यात्रियों को मिलेगी सीधी रेल सुविधा। और संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान पश्चिम एशिया युद्ध से उत्पन्न वैश्विक संकट में पेट्रोल, गैस और डीजल के इस्तेमाल पर संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि पश्चिम एशिया युद्ध के असर को भी कम किया जा सकेगा। उन्होंने कल हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आज हमें मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की अधिक जरूरत है।
1: वैश्विक संकट के इस समय में कुछ संकल्प लेने होंगे। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें।
0: प्रधानमंत्री ने मौजूदा संकट को देखते हुए विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो सोना नहीं खरीदेंगे।
0: रांची नगर निगम ने शहरी विकास और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम द्वारा किए गए जीआईएस आधारित एसेट मैपिंग कार्य के कारण केंद्र सरकार ने झारखंड को 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी है। बता दें कि रांची नगर निगम ने सभी शहरी परिसंपत्तियों की डिजिटल मैपिंग का कार्य पूरा किया है। इसमें नगर निगम की जमीन, भवन, बाजार, कार्यालय, बस टर्मिनल, सामुदायिक भवन और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को जीआईएस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से दर्ज और मैप किया गया। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर सभी जिलों में पानी और बिजली संकट को लेकर 12 मई को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। इसे लेकर विभिन्न जिलों में पार्टी पदाधिकारियों की आयोजित बैठक में दिशा निर्देश जारी किया गया। रांची में आयोजित बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की। श्री मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने को लेकर मार्गदर्शन भी दिया। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग आज सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। बालू घाटों का संचालन लंबित रहने और अवैध कारोबार बढ़ने की शिकायतों के मद्देनजर खान सचिव अरवा राजकमल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई है। बैठक में जिला खनन पदाधिकारियों, बीडीओ और सफल बोलीदाताओं को भी शामिल होने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य के 16 जिलों में 229 बालू घाटों

0: की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक संचालन शुरू नहीं हो पाया है। सांसद कालीचरण सिंह ने कल लातेहार रेलवे स्टेशन पर रांची नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ किया। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार को लातेहार स्टेशन पर रुकेगी, जबकि नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव प्रत्येक शनिवार को होगा। इस सुविधा से लातेहार और आसपास के यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस से सफर करने में सहूलियत मिलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पारदर्शिता लाने और केवल पात्र महिलाओं को लाभ देने के लिए भौतिक सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत आज से 18 मई तक पंचायत और वार्ड स्तर पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 19 से 24 मई तक रिपोर्ट संकलन और अपात्र लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। 29 मई तक आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी। खूंटी पुलिस प्रशासन ने पंजाब के जालंधर में 1.5 वर्ष से बंधुआ मजदूर बनाकर रखे गए सनिका पूर्ति और उसके परिवार को सकुशल मुक्त करा लिया है। इस बचाव अभियान में समाजसेवी लक्ष्मी बाखला का सहयोग रहा। खूंटी महिला थाना प्रभारी फूलमणि टोप्पो ने बताया कि सनिका पूर्ति को जालंधर में बंधक बनाकर मजदूरी कराई जा रही थी।
1: ये लोग 1.5 साल पहले जलंधर में ये बंधुआ मजदूरी का काम कर रहे थे, लेकिन 1.5 साल के अंतर्गत उन्हें कभी भी छुट्टी नहीं मिलता था। जब भी ये छुट्टी के लिए बोलते थे तो उन्हें नकार दिया जाता था। पुलिस अधीक्षक महोदय खुटी के निर्देश अनुसार कलजीत सिंह के घर से रेस्क्यू किए।
0: झारखंड सीआईडी ने साइबर ठगी के मामले में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आरोपी ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर 8.52 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। सीआईडी के अनुसार आरोपी लोगों को फर्जी वेबसाइट पर नकली मुनाफा दिखाकर निवेश के नाम पर रकम जमा करवाता था। मौसम विभाग ने झारखंड में मई के महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है।
2: इस बार जो मई के महीने का जो प्रिडिक्शन आया है उसमें जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है और जो बारिश है वो सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। तो ओवरऑल जैसे थोड़ा सा राहत की खबर है झारखंड वासियों के लिए कि बीच बीच में आपको थंडर एक्टिविटी के साथ में बारिश देखने को मिलेगा और टेम्परेचर भी उससे थोड़ा मेंटेन रहेगा।
0: शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि झारखंड की दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम अनिल मोहोद ने मेजबान चीन को हराकर देश को गौरवान्वित किया है। अन्नपूर्णा देवी ने खिलाड़ियों की मेहनत, समर्पण और प्रतिभा को देश की बेटियों के लिए प्रेरणादायी बताया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने देशवासियों से प्रधानमंत्री की पेट्रोल, डीजल और गैस के उपयोग पर नियंत्रण रखने और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने राज्य के 168 शहरी SHC में प्रसव की सुविधा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने रांची के कोकर स्थित खुरहा टोली से 18 माह की बच्ची के लापता होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है राज्य में नमक की कालाबाजारी पर सरकार सख्त होगी जांच। दैनिक जागरण ने 21 बच्चों के साथ मानव तस्कर की गिरफ्तारी की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस बचाने की अपील की। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 साल तक सोना नहीं खरीदने का किया आग्रह। केंद्र सरकार ने रांची नगर निगम के GIS आधारित एसेट मैपिंग कार्य की सराहना की। झारखंड को 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग की सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ

आज होगी बैठक। लातेहार रेलवे स्टेशन पर रांची नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का हुआ शुभारंभ। स्थानीय यात्रियों को मिलेगी सीधी रेल सुविधा। और शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज टू में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो साथी सैकत चटर्जी। दोस्तों, मुहब्बत ये एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में एक पूरा नगमा है, और पूरे नगमे में अगर मुहब्बत को पिरो दिया जाए तो एक मुकम्मल कहानी बन जाता है। तो आइए, आज हम गीत गुंजन कार्यक्रम में सुनेंगे मुहब्बत से सरोवर कुछ सदाबहार फिल्म नगमे। पहले पादान पर हमने जिस गीत को लिया है वो है फिल्म वीर जारा से, जिसे गाया है उदित नारायण, लिखा है जावेद अख्तर और संगीत दिया है मदन मोहन।

दोस्तों, गीत गुंजन के दूसरे पादान पर हमने उस गीत को लिया है जो बनी तो हालिया दिनों में, लेकिन इसके गीत हमें ले चलता है हिंदी फिल्मी दुनिया की उन गोल्डन एरा में, जहां हर एक गीत दिल को छू कर चला जाता था। हम बात कर रहे हैं फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की, और जिस गीत को हम सुनाने जा रहे हैं उसे आवाज दिया है नीति मोहन, लिखा है कुमार, और संगीत से संजोया है संजय लीला भंसाली।

रपता रपता दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गीत गुंजन की तीसरी पादान पर। यहां हम सुनेंगे आमिर खान और काजोल की फिल्म फना से उस मोहब्बत भरे नगमे को, जिसे आवाज दिया है शान और कैलाश खेर, लिखा है प्रसून जोशी और सुरों से सजाया है जती।

दोस्तों चौथे और आखिरी पादान पर हम आपको लिए चलते हैं फिल्म गैंगस्टर के घेरे में, जहां हम सुनेंगे के का गाया हुआ एक मखमली जुनूनी गीत, जिसे लिखा है सईद कादरी और म्यूजिक दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी, यकीन नहीं होता इतने से वक्त में वो मेरे इतने करीब आ गया है।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं एक और सदाबहार कार्यक्रम जोहार पलामू की तरफ।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं, जोहार पलामू कार्यक्रम का प्रस्तुति स्वर है मेरा, यानी कि आप सभी का रेडियो साथी सैकत चटर्जी का, और इसके प्रस्तुत करता है, संयोजन करता है संजीव कुमार लाल। दोस्तों, जोहार पलामू कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं एक लघु नाटिका जिसका नाम है टूटा चांद।

0: समय बदलता है, रिश्ते भी बदलते हैं और कभी कभी हम भी। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां दीवारें तो पक्की हैं मगर रिश्तों की नींव दरक रही है। तीन पीढ़ियां, एक उम्मीद थी, एक सवाल है और एक खामोशी बन चुकी है। तो आइए देखते हैं नाटक टूटा चश्मा। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत मजा आएगा। फोन वोन मत निकालिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
1: अरे सुमित्रा, देखो तो जरा, मेरा चश्मा फिर से टूट गया। बिना इसके तो कुछ दिखता ही नहीं।
2: कह दो रमेश से, दुकान से बनवा कर ला देगा।
1: हाँ, अच्छा ठीक है, देखता हूँ। वो सुने तब ना।

0: रमेश बेटा, वो मेरा चश्मा टूट गया है। अगर तुम बाजार जा रहे हो तो।
1: पापा, अभी टाइम नहीं है, मीटिंग में हूँ। हर वक्त कोई ना कोई काम लेकर खड़े हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता क्या कितना

0: क्या हुआ जी? क्या कहा रमेश ने?
1: कुछ नहीं, मीटिंग में है।
0: आप अभी भी ठीक से झूठ नहीं बोल पाते हैं जी।

0: आ रहो बेटा, बेटा आ रहो, बेटा आवाज थोड़ी कम कर लेना बेटा, मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है।
1: अरे दादू प्लीज यार, हर चीज में टोका टाकी करना जरूरी है क्या? अब सांस भी आपसे पूछ कर लूं क्या?
2: जब बातें जवाब नहीं मांगती तब रिश्ते सिर्फ औपचारिकता रह जाते हैं। इस घर में रिश्ते तो जिंदा है मगर जीवन कहीं गुम है। क्यों गुम है, कहां गुम है, कैसे गुम है, ये तो आगे देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आइए देखते हैं आगे होता है क्या।
0: सुमित्रा, लगता है आज आंखों में कुछ गिर गया है, कुछ खटक सा रहा है, धुंधला धुंधला भी दिखाई पड़ रहा है।
3: धुंध अब आंखों में नहीं, हालातों में है जी।
4: मॉर्निंग पापा, कैसे हैं आप? नींद ठीक से तो आई ना आपको?
0: बहू चाय? आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? तू मुझसे पूछ रहा है?
4: अरे अरे पापा, अब भी? और अब तो मैंने सोच लिया है कि थोड़ा वक्त तो मैं आपके साथ ही बिताया करूंगा। वैसे पापा, वो आपकी पुरानी पेंशन वाली फाइल कहाँ है?
0: भला क्यों?
4: अरे वो आप बैंक की लंबी लाइन में लगते थे, मैंने सोचा आप मुझे ही नॉमिनी बना देते हैं तो मैं ही सारा काम देख लिया करता।
3: ओहो, तभी मैं सोचूं आज अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ आया रमेश।
4: अरे अरे मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, बस

0: तरह व्यस्त रहता हूँ।
1: बेटा रमेश, बस अब एक पेंशन ही तो बची है, मानो डूबते को तिनके का सहारा।
0: अरे पापा, आप भी ना, और मैं हूं ना आपकी देखभाल करने के लिए। आप बैंक की लंबी लाइन में लगते थे, परेशान होते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ, है ना मीनू
2: जी?
1: ठीक है, ये ले फाइल, लेकिन अगर थोड़ी फुर्सत मिले ना तो ऐसे ही दो घड़ी बैठकर बात कर लिया कर बेटा, फिर से जीने की लालसा जाग जाएगी बेटा।
0: जी जी पापा, जरूर।
2: कुछ ज्यादा ही उम्मीदें नहीं पाल रहे हैं जी?
1: उम्मीद उम्मीदों के बनते बिगड़ते ख्वाब, बन गए तो सबके और बिखर गए तो हम।
2: जिसने छांव दी उसी को धूप में छोड़ देना, यह कोई मजबूरी नहीं बल्कि सहूलियत में पला स्वार्थ है। अब आगे देखते हैं कि यह स्वार्थ क्या क्या गुल खिलाता है।

0: रमेश बेटा, बेटा रमेश, अगर थोड़े पैसे मिल जाएं, तो मैं अपना चश्मा बनवा लूं और तेरे माता जी की दवाइयां भी तो लानी है।
1: पैसे? कैसे पैसे? कहां से दूं पैसे? आप लोगों के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।
0: बेटा वो मैं जो कह रहा था, पेंशन के पैसे, मेरे पेंशन के पैसे, उसी में से।
1: अच्छा तो सुनिए, हर महीने इस घर का बिजली का बिल आता है ना, तो उसमें आपका भी हिस्सा होता है, और अखबार वो तो आप ही पढ़ते हैं, राशन का खर्चा देखिए, और वो दवाइयाँ, वो टीवी का केबल, ये सब मैं अकेले कैसे मैनेज करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ।
0: तू कहना क्या चाहता है बेटा?
1: नहीं पापा, मैं बस बता रहा हूँ, घर चलाना आसान काम नहीं होता, आमदनी सीमित है, घर का सारा बोझ और ऊपर से आप लोगों के खर्चे।
2: हमारे खर्चे? हम तो खुद को इस परिवार की नींव समझते रहे, पर हमें नहीं पता था कि हम तो केवल उम्मीदों का एक जर्जर होता खंडहर है, जिसे अब कोई गिराने की जल्दी में है। सुनो जी, ये 480 रुपए रखे थे मैंने बचाकर, शायद आज ही के लिए।

0: आरो बेटा, बेटा आरो, आरो बेटा, जरा सुन तो।
1: क्या है दादू, हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, अब क्या हुआ आपको?
0: बेटा जरा दुकान तक छोड़ देगा क्या? वो चश्मा ठीक करवाना है।
1: अभी? सीरियसली? मुझे इस गेम का

0: लेवल पार करना है और ऊपर से कॉलेज से भी असाइनमेंट दे देते हैं करने को।
1: आरव, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? दादाजी है वो तुम्हारे।
0: अरे दादी, आप लोग तो हर बात ही पर सेंटी हो जाते हो। हर बात पर ड्रामा करना जरूरी है क्या?
1: सुनो जी, कहाँ?
2: दुकान तक ही, पास की दुकान तक ही जाऊंगा सुमित्रा। अब यही चश्मा और तुम्हारी दवाई, यही तो हमारे साथी हैं।
1: पर बिना चश्मे के रास्ते में कहीं?
2: चिंता मत करो, अब और कोई चारा भी तो नहीं है।
3: जिस आंगन में किलकारियां गूंजती थीं, जहां हंसी के फव्वारे बहा करते थे, आज वहीं हर कोने से आहें टपकती हैं और दीवारें करा रही हैं। लोग तो वही हैं, चेहरों में तो कोई फर्क नहीं, पर उनकी प्राथमिकताओं के रंग अब बदल चुके हैं। अब रिश्ते बोझ हैं और भावनाएं अतिरिक्त सामान। दादाजी को गए हुए 2 घंटे हो गए, अब देखते हैं उनका ध्यान किसी को है भी या नहीं।
0: यार, मेरे दादा दादी बहुत पकाते हैं। मोबाइल मत चलाओ, जोर से मत हंसो, ये खाओ वो मत खाओ, हर वक्त टोका टाकी, बस तंग आ गया हूँ मैं।
4: ओए आरवा, तू गेम विस्ते मॉन्स्टर मार रहा है ना, पर असली मॉन्स्टर तो तेरे अंदर है यारा। जरा सोच, जब तेरे दादा दादी हमेशा के वास्ते चले जाएंगे, फिर तू बस पछताएगा और फोन नू घूरेगा यारा।
5: हाँ सही कह रहा है बिल्लू, उस दिन तुझे समझ आएगा, जिसे तू आज टोका टाके कह रहा है वो वास्तव में तेरे लिए उनकी चिंता है।
6: मेरे दादा दादी होते मैं एक दिन भी उनसे दूर ना जाता। कई बार सोचता हूँ घर में कोई ऐसा होता जो बिना किसी कारण माथे पर हाथ फेराता और परेशानी में झिड़क देता।
4: ओए तेरा वाईफाई कटे तो तू बोर हो जाता है, पर जिनके साए विच तू पला है वो साए के दिन ऑफलाइन हो गए ना यारा, फिर कोई रिकनेक्ट ऑप्शन नहीं मिलना। जरा सोच के देख।
5: बात तो सोचने वाली है आरव। बिल्लू, मजाक मजाक में तूने बहुत बड़ी बात कह दी यार।
4: हाँ जी रब जी, सो बिल्लू बोलता है तो दिल से बोलता है, नहीं तो नहीं बोलता है जी।
6: तुझे पता है आरव, एक परिवार में 3 पीढ़ियां होना वरदान होता है और तू इसे बोझ समझता है। भाई तेरे पास तो समय काटने के इतने साधन हैं, कभी अपने दादा दादी के बारे में सोचा? इस अकेलेपन में कितना दम घुटता होगा उनका।
0: सच में क्या इतना खुद गर्ज हूँ मैं?
4: ओए छड़े यारे, गिल्ट गिल्ट, चल उठ, चले तेरे हीरो दादाजी ने ढूंढ ले, अपने स्वाभिमान विच अपना नुकसान न कर ले तेरे हीरो दादाजी। गेम बाद में खेलेंगे, पहले असली लेवल क्लियर कर, चल जल्दी कर।
6: आरव, आज पहली बार लग रहा है दादाजी को सिर्फ दवा की नहीं तेरी जरूरत थी। तू उनका चश्मा बन सकता था, तुझे उनकी लाठी बननी थी यार, पर अब।
5: हाँ चल, 2 घंटे हो गए उन्हें गए हुए, भगवान करे वे ठीक हो।
6: चलो चलो चलो चलो, चलो, चलो, चलो।
3: अच्छे दोस्त आईने की तरह होते हैं, सच दिखाते हैं चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, और कभी कभी वही दोस्त हमें खुद से मिलवा देते हैं। अब आगे देखते हैं कि यह बातचीत आरव पे क्या रंग ढाएगी।
7: अब तो हद हो गई है रमेश, हर वक्त कोई ना कोई परेशानी, कभी चश्मा, कभी दवाइयां, कभी गिर गए, कभी डॉक्टर।
8: वही तो मीनू, मैं भी तो इंसान हूँ, घर का खर्चा, बच्चे की पढ़ाई, ऑफिस की टेंशन, ऊपर से इन्हें भी इनकी पेंशन का हिसाब दो।
7: अब क्या सोच रहे हो?
8: सोच रहा था वृद्धाश्रम में अच्छी सेवा होती है आजकल, उन्हें दोस्त, दवाई, डॉक्टर सब सुविधा होगी, कम से कम वहां वे और यहां हम चैन से तो जी सकेंगे।
1: हम बोझ हो गए बेटा।
8: नहीं नहीं माँ, वो मैं बस आप लोगों की सुविधा के बारे में ही सोच रहा था।
1: अच्छा, भगवान तुझे खुश रखे। हमारा क्या है, हम तो अब ना जिंदा में है ना मुर्दों में, एक पुराने जर्जर सामान की तरह जो अब किसी काम का नहीं, बस थोड़ी सी जगह और देखभाल ही तो खोजता है।
0: पापा, आप उन्हें वृद्धाश्रम भेज देंगे, उन्हें जिन्होंने कभी आपको बोझ नहीं समझा, आप उन्हें बोझ समझ रहे हैं।
8: बेटा, तुम नहीं समझोगे बेटा।
0: नहीं पापा, आज मैं सब समझ गया हूँ। अगर आपने उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात की तो हो सकता है आपके द्वारा बनाई गई यह परंपरा मुझे भी ना निभानी पड़ जाए।
7: आरव,
3: एक दिन जब हमारे पास सब कुछ होगा पर कोई हमें देखने और समझने वाला नहीं होगा, तब हम समझेंगे कि परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के सम्मान का नाम है। जिस घर में बूढ़े माँ बाप के लिए जगह नहीं होती, उस घर में बरकत तो क्या छाया भी नहीं ठहरती।
8: जी ठीक है, मेरे मम्मी पापा हैं। हाँ हाँ, कल सुबह ही ले आता हूँ। जी बिल्कुल, समय पर आकर मैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूंगा। बाकी वृद्धाश्रम कितने बजे खुलता है? ओके ठीक है।
1: जी सुन रहे हो, क्या हुआ तुम्हें?
0: दादाजी, मम्मी पापा जल्दी आइए, दादाजी बेहोश हो गए। मैं स्कूटी निकालता हूँ, आप एम्बुलेंस बुलाइए।
8: अरे अब क्या हो गया इन्हें?

0: रमेश, इन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्हें समय पर लाया गया। अभी ये खतरे से बाहर हैं, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव या चिंता न दीजिएगा, वरना अगला दौरा जानलेवा हो सकता है।
1: अब क्या ही करें, उम्र तो हो ही गई है ना, अपनी जिंदगी तो जी ही चुके हैं, ऐसे तो हर दिन इन्हें कुछ न कुछ होता ही रहेगा।
2: अगर जी ही लिया होता तो आज मौत को गले लगाने की नौबत न आती।
3: बस करो माँ, आपकी ये जहर जैसी बातें हमारे घर की नींव हिला देंगी।
4: जहाँ अपनों का दर्द बोझ लगने लगे, वहाँ दिलों का रिश्ता नहीं, सिर्फ रिश्तों की जिम्मेदारियां बचती हैं। कभी कभी हम जिनके साथ बड़े होते हैं उन्हीं को सबसे छोटा बना देते हैं। उनकी उम्र, उनकी जरूरतें और मौजूदगी को नजरअंदाज करके।
0: देखो रमेश, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ और तुम्हारे पिताजी का दोस्त भी, इसलिए आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ।
5: जी अंकल, बोलिए।
0: हाँ, आज सही समय है कि तुम्हें यह बात पता चले कि तुम इनके सगे बेटे नहीं हो, बल्कि जिस स्त्री ने तुम्हें जन्म दिया था वह मेरी मरीज थी, कैंसर से जूझ रही थी। उन्होंने अस्पताल में ही तुम्हें जन्म दिया। जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनकी डेथ हो गई थी।
5: क्या?
0: हाँ, ये रहा तुम्हारी असली माँ का डेथ रिकॉर्ड और तुम्हारे जन्म की डिटेल्स।

0: और उस समय तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गोद लेने की इच्छा जताई थी, क्योंकि वे एक अनाथ बच्चे को यूं ही इस कठोर दुनिया की ठोकरें खाता नहीं देख सकते थे। तुम उनके अपने खून नहीं थे, पर उन्होंने कभी तुम्हें पराया नहीं समझा। तुम्हारी परवरिश की खातिर उन्होंने अपना परिवार नहीं बढ़ाया।
1: मैं तो उनका अपना भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना।
0: उन्होंने तुम्हें अपनी दुनिया बना लिया, तुम्हारी परवरिश की खातिर अपने सपने त्याग दिए, क्योंकि अब तुम ही उनका सपना थे।

0: पेशेंट के साथ कौन है? उन्हें होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं।
1: पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो प्यार दिया, मैं तो उसका एक अंश भी नहीं लौटा पाया।
2: हमें माफ कर दीजिए पापा।
3: ओए दादाजी, इनकी माफी तो बनती है, माफी दे दो सारयानु। दादाजी तुसी अस्पताल की गए ते सारा मोहल्ला इमोशनल हो गया।

0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
1: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
1: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
1: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
1: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes, sir, we have seen.
4: I have seen, sir.
5: I like bicycle, sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink.
9: And mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: Do it again, please.
3: Trin, trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.

0: कार्यक्रम
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
2: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
3: रंग दे बसंती चोला मेरा।
4: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
3: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
4: वो तो ठीक है साहब,
3: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
4: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
3: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
4: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
3: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
2: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना

0: उन्होंने कभी नहीं सीखा। और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: मां।
2: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है मां। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे।

0: इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
1: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
2: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
3: यस सर।
2: नाथु सिंह निशाना साधो।
3: यस सर।
1: दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
2: फायर।
1: सर
2: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
3: जी।
2: फायर।
1: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
2: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
1: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। जो मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, जो हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं।

0: ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे। तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आपने सुना उमंग का कड़ी संख्या 1281। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली, मुंबई व रांची केंद्रों से, जहां से बारी बारी से सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। अब दिल्ली केंद्र से जुड़कर समाचारों से जुड़ने का मौका है, लेकिन एक जरूरी जानकारी आपसे साझा कर लूं। आज 11:10 पे हम दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत कार्यक्रम सुनेंगे, जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री सोमनाथ अमृत पर्व पर राष्ट्र के नाम संबोधन किया जाएगा। हम 11:10 पे इसके समापन तक इस कार्यक्रम को सुन सकेंगे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।

0: करता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आइए दोस्तों, आप जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और बारी बारी से सुनते हैं हिंदी व अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बेचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
0: प्रधानमंत्री की ये अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधान

0: मंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह

नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से नवाचार क्षमता का उपयोग करते हुए भारत के विकास को गति दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सिटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप याजस ने बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, हनी ईरानी।
0: हाँ, तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उस तरह कोई ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहाँ पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहाँ जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ, और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: ज्यादा, उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला, जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला जिसलिए उन्होंने, देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे, तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी, जो बख्शी साहब को आप फीस देते नहीं, अगर आपको सूट करता है तो उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहा है, जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ हाँ।
0: बोला हाँ लूंगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया, तो गाने वाने अब साहब। उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो हो गया, बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं है।
1: बाबा,
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप कुमार
0: साहब, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब

0: जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह ले, हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे। कर लो, वो मान गए, यश जोश की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोश, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जूहू बीच पे बैठे, समंदर के किनारे
1: कहानी ढूंढ रहे हैं।
0: कहानी ढूंढ रहे, क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो उसका ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग गए।
1: हाँ
0: तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया।
1: हाँ
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं उनको एज ए राइटर। तो उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने का। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के सिलसिला
1: सिलसिला वाला काम शुरू किया
0: वाला काम शुरू कर दिया।
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, तभी पिक्चर बनाते, वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वो वाली,
1: शक्ति
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: मशाल, मशाल का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: ओ
0: मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो।
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे ही मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट मैं यश चोपड़ा को भी सुना दूं।
1: जी
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके
0: मैं
1: किया
0: नहीं बोल सकता था,
1: जी।
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब।
1: जी
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का,
0: दुनिया का आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर,
0: शेखर कपूर, सॉरी हाँ। शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है, शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी
1: हाँ।
0: पहली फिल्म की
1: हाँ।
0: कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से, जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 साल सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुनिए इतनी देर सुन सकता हूँ, इतने जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 24 सीन तो पूरे क्लियर थे उस तरह सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार तो अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा, तो मैं 10 बजे सेट पे ला करूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे, और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी,
1: कि ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुकर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी की हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की, तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुकर का भी शेयर था 5%।
0: वाह,
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे, जो यश जी ने 10% करवा दिए, क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं।

0: बेटा तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो, तो मेरा 10% हो गया। 5% रमेश वाला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
1: जी, गजब।
0: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है। वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए।
1: ओहो
0: मनमोहन किसका बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब, ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा,
0: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है, तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ,
1: प्रदीप को लेके,
0: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे,
1: जानेसार साहब के,
0: जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो तो डिजर्व करते हैं 10%,
1: हाँ,
0: तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
1: दिलीप साहब को बताई,
0: दिलीप साहब को बता दी।
1: ओ हो, गजब।
0: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है
1: हाँ
0: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिले मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
1: ओह क्या बात है
0: वो ही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं,
1: जी
0: वो पंजाबी हो वहाँ के थे पिशावर के उस
1: जी
0: तरफ के, और मैं बफा एपटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा, यार के बदले जरा या
1: अच्छा
0: जारा,
1: जी, इसीलिए वो सागर यारा
0: सागर
1: साहब की
0: यारा है,
1: किताब में आई।
0: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत जब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, और तेरा प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूंगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस
0: और
1: तरह
0: जावेद
1: फिल्म
0: से।
1: दुनिया बनी।
0: हाँ

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ। बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है? फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे मेरी लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। फिर आगे वो उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटें हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकती और डेटें पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा, और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र

0: से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचते हैं। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
1: जी,
0: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा आप प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके।
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों बाहर आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बातें,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर एज इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय हो गई, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों चाहे, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
1: वाह,
0: ओके हो गया सब। हम निकले, हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लेटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही नहीं रहा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ,
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मीटिंग करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को यह कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारी फिल्म में भाग्य, सरकमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद देखते हैं। नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतने हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म, अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूँगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग हो, के जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल लो आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए आप, बड़ा कैमरामैन लिया महाजन साहब कैमरामैन,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीज़ें उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। चावला साहब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
2: जी जी जी।
1: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दिन के 11 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: मिश्रित संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ऐसे कुछ गीत जो मिले जुले होते हैं कुछ।
2: जयमाल का सपना देखा था, श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
3: प्रधानमंत्री बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम को सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में स्वागत कक्ष, नागरिक सुविधाएं, भोजन कक्ष और ई पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनके बीच विभागों के बंटवारे की उम्मीद है। नए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की ये पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। नवनिर्वाचित तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलक वेत्री कड़गम के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार को 13 मई से पहले सदन में बहुमत साबित करना होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे, जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस दिन पोखरण परीक्षण क्षेत्र में

0: पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े शांति प्रस्ताव पर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता न होने के कारण घरेलू शेयर बाजार में आज 1.25% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1089 अंक गिरकर 76,240 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.

0: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं, विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं, और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ, सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है, विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है, पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है, स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं, और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं सुनिर्णं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
3: नमस्कार। आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट, यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है, एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं, लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है, क्योंकि मननात प्रायते जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
1: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
3: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति चिन्ह प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
3: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं, और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in...

0: newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tell us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है. मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से. और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं. कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है. चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है. अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है. और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं. और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है. हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है. राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है. सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा. उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को. और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है. पुष्प सज्जा की गई है. शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं. डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहां पर पुष्पों से बनाए गए हैं. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है. हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है. साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे. वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी. 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था. उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में. और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है.
0: Absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. Manaha Shiva Sankalpamastu.

विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्त

0: विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत हमें शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है, और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं, और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में, और वायु सेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna, Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded enthusiastically.
3: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है, सोमनाथ मंदिर हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है. आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. आइए, आपको सुनवा रहे हैं एक भजन.

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And early, we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं, तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई है। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है, और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई, और

0: हवाई करतब दिखाए गए। उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड incidentally Neelam, today is the very day that the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated the reconstructed Somnath temple on the 11th of May 1951, and Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream, but taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade, and as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं, और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहे, पेयजल की सुविधाएं रहे, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं, वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाए, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से

0: दिलचस्प झलक सुनाई देगी। तो चलिए आगाज करते हैं पुराने समय से, फिर धीरे धीरे लौटेंगे नए समय तक। तो दीजिए सुनवाते हैं आपको पतंगा फिल्म का गीत शमशाद बेगम और चित्तालकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसके बोल लिखे हैं, सी रामचंद्र का धुन, और इस फिल्म का नाम पतंगा।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा धुन। मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं, समीर की रचना है। लीजिए सुनिए ये गीत।
1: हेलो 9821026212 BPL।

0: व्हाट इज मोबाइल
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर, तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
2: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
2: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है। इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
2: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
2: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
1: जी।
2: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जा हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जा अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं
1: जी। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर हैं, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
2: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
1: जी।
2: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
2: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे

0: समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहाँ पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयोवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: त्रिजी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में.
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव. गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है. महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ. साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं. ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम समीशम भजे लियते यत्र विश्वम. आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं. जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है. ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है. साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी. अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे. प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व

और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप दिया था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाठक ने बार बार जीता है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने
11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत कि कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे। और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की गति आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार

तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे, बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग में अलग अलग जीवों के संकल्प में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज कभी भीमदेव कभी राजा महिपाल प्रथम कभी राव खंगार ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करते रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़, जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं।

इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं, उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ
भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना

जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्मा, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ी अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।

0: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
1: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का किया आग्रह। सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके सहयोगी संजीव कुमार लाल को दी जमानत। गृह मंत्रालय के जनगणना संचालन निदेशालय ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों को लेकर रांची नगर निगम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर जेटेट भाषा विवाद पर पार्टी का मांगा मंतव्य। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य समेत 17 से अधिक पदक जीते। और अब समाचार विस्तार।

0: से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
0: सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। जमानत मिलने के बाद आलमगीर आलम लगभग दो वर्ष के बाद जेल से बाहर आएंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक संजीव कुमार लाल के बेल को भी स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्रालय के जनगणना संचालन निदेशालय ने रांची नगर निगम की जनगणना 2027 की तैयारियों की सराहना की है। निदेशालय ने रांची नगर निगम की सक्रियता, कार्यशैली और समयबद्ध कार्य निष्पादन की प्रशंसा की है। झारखंड जनगणना संचालन के निदेशक प्रभात कुमार ने नगर आयुक्त सुशांत गौरव को पत्र भेजकर कहा कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों में रांची नगर निगम ने राज्य भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि यह सराहना हमारे कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी गठित होने के साथ ही कांग्रेस संगठन में आंतरिक असंतोष जारी है। इस बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने पार्टी के अंदर उचित पद नहीं मिलने से नाराज नेताओं को मैसेज दिया है कि राजनीति में सबकी आकांक्षाओं को पूरा करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए मुश्किल है।
2: आदमी की अपनी आकांक्षाएं रहती है, सबकी आकांक्षा किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। करने वाला तो कुछ लीडर ही रहते हैं, जो इन निर्णयों को लेते हैं, नेता ही रहते हैं, उनके माथे पर यह आरोप आता है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
0: वहीं नवनियुक्त महासचिव और वरिष्ठ दलित नेता निरंजन पासवान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने संवेदनशीलता के साथ नई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया है।
3: पार्टी ने विभिन्न प्रकार के सोच विचार के लोग हैं, प्रभारी जी ने जो सोच समझ सबको काम भी बांटा है। लोगों को थोड़ा समझना होगा, पार्टी के अंदर रहकर हमको कोई काम करना है तो काम करेंगे। अब इसमें कुछ लोग नाराज है तो उसके प्रति भी सोचा जाएगा।
0: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर जेटेट भाषा विवाद पर पार्टी का मंतव्य मांगा है। उन्होंने लिखा है कि भाषा विवाद समाज और राजनीतिक संगठनों से जुड़ा है, ऐसे में भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट नियमावली में शामिल करने पर पार्टी का निर्णय जानना आवश्यक है। झारखंड विधानसभा की प्राकलन समिति ने दुमका में विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समिति ने योजनाओं के पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर देते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मौके पर सभापति सहलिट्टी पारा, विधायक हेमलाल मुर्मू, बोरियो विधायक लुम्बिन हेमराम, घाटशिला विधायक समीर मोहंती और टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तलैया निवासी अंशुमान कुमार सिंह ने यूपीएससी की भारतीय वन सेवा की परीक्षा में देश भर में दूसरी रैंक हासिल की है। आकाशवाणी से बातचीत में अंशुमान कुमार ने अपनी सफलता के लिए अपनाई गई रणनीति साझा की।
4: इसके तीन फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अलग अलग फेजेस से अलग अलग स्ट्रेटजी है प्रिपेयर करने का। तो मेरी कुछ कोर स्ट्रेटजी जो तीनों फेज में मुझे काम आया, उसमें ये था कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखें एंड उनको मल्टीपल टाइम रिविजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करें। इंटरव्यू के

0: लिए आप अपने पे काम करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें और आप मेंटली रिलैक्स रहें।
1: राजधानी रांची के कोकर स्थित खुरहा टोली से 18 माह की लापता बच्ची अदिति पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रांची पुलिस ने बच्ची से जुड़ी जानकारी और सुराग देने वाले के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। जमशेदपुर पुलिस ने बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांधीनगर बस्ती में छापेमारी के दौरान संतोष सिंह को पकड़ा गया। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी दूसरी पत्नी और अन्य 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है।
2: विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन सभी के पास अलग अलग मात्रा में ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली है जिसकी बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपए है और 4 मोबाइल भी इनके पास मिले हैं। ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट सिंडिकेट है, इसमें कई अन्य लोग भी शामिल है जिनके विरुद्ध अभी अनुसंधान चल रहा है और आने वाले दिनों में उनको रेड करके गिरफ्तार किया जाएगा।
1: पलामू जिले की पुलिस ने आपराधिक गिरोह में शामिल लोगों की सूची तैयार की है। जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी को निर्देश जारी किए गए हैं।
3: हमने अलग अलग कांड के तरीके से जो लिस्टिंग की है जिसमें कि जैसे अपराध जैसे एक्सटॉर्शन हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, एनडीपीएस या अन्य जो भी अपराध है, इन सभी अपराधियों की एक लिस्ट बनाई है। इन अपराधियों के विरुद्ध में निगरानी प्रस्ताव खोलने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके पश्चात इनके खिलाफ पीसीसी की कार्रवाई, जिला बदर की कार्रवाई, थाना हाजिरी की कार्रवाई उसको स्टार्ट किया जाएगा।
1: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची के बेड़ो प्रखंड के टेंगरिया में आयोजित 21 पढ़ा जेठ जत्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जत्रा केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि आदिवासी समाज की परंपरा, सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 1000 की गिरावट के साथ 76,300 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 233 अंक गिरकर 23,942 पर आ गया है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,64,000 रुपए प्रति किलो है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक समेत कुल 17 पदक हासिल किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इधर भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के लिए भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम में झारखंड की संदीपा, सुगन, खिली, पुष्पा, श्रुति और नीलम का चयन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का किया आग्रह। सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके सहयोगी संजीव कुमार लाल को दी जमानत। गृह मंत्रालय के जनगणना संचालन निदेशालय ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों को लेकर रांची नगर निगम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर जेटेट भाषा विवाद पर पार्टी का मांगा मंतव्य। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य समेत 17 से अधिक पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। इसमें आज आप सुनेंगे सिप्रा बोस से ठुमरी और दादा।

0: संयोग देखिए, अभी इससे पहले हम बंधन की बात कर रहे थे तो कहीं आजाद गगन में उड़ने की बातें हो रही हैं इस गीत में। हमारे एक साथी ने लिखा है, माता पिता का बार बार फोन करके हालचाल पूछना, वक्त पर खाना या सोने के लिए कहना कुछ बच्चों को अच्छा बंधन नहीं लगता, पर ये बातें जब माता पिता नहीं रहते तब यही बंधन बच्चों को याद आता है और प्यारा लगता है। जी हाँ, सही कहा आपने। एक साथी ने लिखा है, संसार में सबसे खूबसूरत बंधन वो है जो रक्त से नहीं बल्कि भावना से जुड़ा होता है। माँ का अपनी संतान से जुड़ाव, भाई बहन की नोक झोंक या मित्रों का निस्वार्थ प्रेम, ये सभी बंधन हमें ये एहसास कराते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में अकेले नहीं हैं। एक ने लिखा है, जीवन में बंधन तो होना ही चाहिए, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य और दोस्तों का प्यार का बंधन, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी होते हैं, वो भी निभाएं तो वसुधैव कुटुंबकम वाला बंधन सच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुनिए ये संदेश।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: समय की एक अजीब बात यह है कि जब समय अपनों के साथ गुजारा जाए तो कम लगता है और जब कठिन समय आता है तो वही समय बड़ा ज्यादा लगने लगता है। बात हो रही है पल की। जी हाँ, अगला शब्द है पल। ये पल वही होते हैं जो अच्छे हो तो जल्दी से निकल जाते हैं और अगर कठिन परिस्थिति में हो तो फिर बड़ा दुख देते हैं और बड़े लंबे लगते हैं। तो चलिए पलों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं ताकि हम उस शब्द तक पहुंच सके जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पहचाना है। पहचानिए उस शब्द को, वरना होगा ये कि लिस्ट में उस गीत को पीछे करते करते करते कहीं वो गीत लिस्ट से बाहर ना हो जाए। समय का काटा चल रहा है तो जल्दी से उस शब्द को भी पहचानिए जो अभी तक आप नहीं पहचान पाए हैं। और तब तक सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। घड़ी का काटा बढ़ रहा है, शब्द को जल्दी से पहचानिए। एक ही शब्द है जो अभी तक किसी ने नहीं पहचाना है, बाकी सारे शब्द लिस्ट में आ चुके हैं।

बंधन को लेकर एक साथी लिखते हैं, बंधन अनुशासन का दूसरा रूप है, इसमें व्यक्ति संयमित रूप से रहता है। तो किसी ने लिखा है, अब जाकर मेरा अनुमानित गाना हो रहा है। खैर, बंधन की बात आपने पूछी तो पूरा संसार ही बंधन है। हम तो विविध भारती के बंधन से जकड़े हुए हैं, बिना बंधन के संसार चल ही नहीं सकता है। इसके पीछे विज्ञान है, धर्म है और दर्शन भी है। अगर विवेचना करने लगूं तो पूरी एक पुस्तक ही बन जाएगी। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर यदि हम बात करने निकलें तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। हमारे कुछ साथी हैं जो अलग अलग कयास लगा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इस शब्दों पर गीत आ सकता है, या फिर तैयार, या फिर बेबाक, इन शब्दों पर गीत हो सकता है, या फिर जिसका, ये भी किसी ने लिखा है। चलिए आप लोग अंदाजे लगाते रहिए, हम गाने सुनवाते रहेंगे और तब तक आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, जो कि है, आपने सही पहचाना है, आप में से कुछ श्रोताओं ने लिखा है आसमां के नीचे, इस गीत को लिखा है, तो बिल्कुल आप सब सही थे। ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज, लता मंगेशकर ने साथ दिया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एस जी बर्मन का संगीत।

तो कई सारे श्रोताओं ने उस शब्द को भी पहचान लिया है। जी हाँ, आप लोगों ने ये शब्द बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए, थोड़ी सी मटरगस्ती करना तो हमें भी पसंद है कि शब्दों के बीच में कहीं नाम, सर्वनाम, विश्लेषण, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपने सही कहा। एक साथ ही लिख रहे हैं, हमसे जो शब्द छूट गया है वो शायद आपका ही नाम है नेहा, है ना। किसी ने लिखा है नेहा शब्द पर भी गाना होगा, तो किसी ने लिखा है नेहा जी आपका नाम इबारत के अंदर है। तो आपने अंदाजा तो लगा ही लिया कि नाम इबारत के अंदर है तो इस पर गीत हो सकता है। फिर किसी ने लिखा है तो से नेहा लगा के हार गई सजना, तो नहीं सोचा है आपने इस गीत के लिए उन्होंने लिखा है। फिर किसी ने लिखा है नेहा जी एक शब्द मैंने पहचाना है जो किसी ने नहीं लिखा, आपका सुंदर सा नाम नेहा, धन्यवाद इसे सुंदर कहने के लिए। फिर किसी ने लिखा है मे बी नेहा हो सकता है लास्ट वर्ड, तो लास्ट तो नहीं, हम इसे अभी ही सुनवा रहे हैं। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मैं नशे में हूं, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और शब्द पहचानने के लिए धन्यवाद।

हमारे साथ ही बिल्कुल चौंक गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए तो ही मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है सुरीले सफर में, नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूँ। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी है जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, एक आपके नाम से गाना है वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, गीत और संगीत किशोर कुमार का।

0: जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना, बेबाक परिंदा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना, सफर तो जारी है इस हर पल हर मोड़ पर, कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी किसी ने लिखा है कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि नाम दुर्लभ तो नहीं है पर गीत बिल्कुल दुर्लभ है। जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना, जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा, फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी।
1: हालांकि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव से अगले 1000 साल के लिए मुल्क के नजरिए को तरकीब मिलेगी। जनाब मोदी ने मंदिर के अहिया को 75 साल मुकम्मल होने पर महापूजा की। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने सरहद पर बाढ़ लगाने के लिए आराजी BSF को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। मरकज ने विकसित भारत जीरामजी एक्ट के निफाज को नोटिफाई कर दिया है जो 1 जुलाई से शुरू होगा। स्टेट बैंक की तहकीक में कहा गया है कि आलमी उथल पुथल के तनाजुर में मुल्क की मईशत बदस्तूर मुस्तहकम है। और IPL क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: awareness about technology's role in addressing societal challenges and improving daily life. As India embraces cutting-edge technologies like AI, biotechnology and quantum computing, the day serves as a reminder of progress and the power of innovation. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. India Meteorological Department IMD has forecast isolated thunderstorms, lightning and gusty winds over northwest parts of the country till Thursday. Isolated hailstorm activity is also likely to be experienced in Jammu Kashmir, Ladakh today and tomorrow. The weather agency has said that Himachal Pradesh and Uttarakhand are also expected to experience similar conditions tomorrow. Meanwhile, the Uttarakhand administration has urged the Chardham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and the day after tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will face Delhi Capitals at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala this evening. The match will begin at 7:30 p.m. In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat Health Scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
3: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
2: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है

0: कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने
1: किया। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज

0: ऑन यायर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
4: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद

0: ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश। तो आज के जो हमारे कलाकार हैं उनका नाम है बॉबी देओल। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि असल में उनका नाम बॉबी देओल नहीं बल्कि विजय सिंह देओल है। बॉबी

कायल परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज दी है शंकरदास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: असली नकली इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए, शेरोज श्रीवास्तव के एक लिखा हुआ भी है ये गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी, सबिता बैनर्जी और सीता की, फिल्म का नाम बाजे कुंगरू।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चाइनाटाउन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन। और सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम से इस गीत के साथ नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के इतनी उड़ान।
3: 47 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी। तस्कर इसे बस के जरिए बिहार भेजने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मौसम। राज्य में 16 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। पलामू प्रमंडल को छोड़कर रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत अधिकांश जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 और 14 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और झारखंड की बेटी दिवाशी ने थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। जामताड़ा की रहने वाली दिवाशी ने इस उपलब्धि पर पूरे जिले में खुशी है। परिजनों और खेल प्रेमियों ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: को मंदाकिनी जोशी और
1: मंश्री वर्मा का
0: प्यार भरा नमस्कार। और मंश्री क्या हाल है?
1: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
0: बिल्कुल।
1: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
0: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और देखो मंजरी गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
1: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है, या आपके पास सुविधा है आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही,
0: बिल्कुल
1: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर तालाब है तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं। तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसें एक साथ नहा रही हैं, गर्मी इतनी चिलचिलाती धूप होती है लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी
0: ठंडी रहती है
1: तभी निकलती है। तो
0: बिल्कुल
1: हमसे जितना हो सके हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं।
0: नहीं बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गांव में तो इस तरह की छपरा बना दिया जाता है जहाँ भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलीथीन को भी वो चबाते रहते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं और यही पॉलीथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
1: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें कि पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें या कचरा जहाँ डालते हैं वहाँ डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें। और पशुओं का बहुत ख्याल रखें क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए उसमें है बिहार के व्यंजन जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर दी
0: है
1: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी।
0: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या?
1: नहीं नहीं
0: है ना, तो ये गलत बात है ना,
1: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे अगली बार खिलाएंगे, है ना। कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
0: बिल्कुल सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था, और वैसे तो देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना, तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं।
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं ना
0: बिल्कुल,
1: जब धुन सुनाई देती है, ऐसे बोल सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाची लो
0: नाची लो। तब तो खैर मन का हाल ही क्या होता होगा ये तो वही जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक।
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।

उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी, लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे, इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। वो उसे पूरी आजादी से पांथे, उपेले बनाए, घर लीपें, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्श

0: ये शेर, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। आठ आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह ना लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है इतना खराब दूध? ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता। वो कहती,
1: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे? गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना। रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
0: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। ये हरकत उनकी जानकारी में होती हो, ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी? श्रीहन आंखों में धूल झोंकेंगी। और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दूहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है। न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्य वर्धक है। संयोग से मेरे यहां जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया।
2: अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कम खोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही बियाई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
0: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था। लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है,

0: काम धेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिलाती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी, बात क्या है? पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
1: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
0: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां? इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार घंटे दो घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग, बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 शेर की जगह मुश्किल से शेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है, यही क्या कम है? मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी? लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे? नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी। मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी, उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी। लेकिन बाग और खेत में घुस गई, आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
2: बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कानी हाउस भेज देंगे।
0: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
3: अरे मैं हाँ हाँ करती रही मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बताए देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
0: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर

0: फिर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
1: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे, और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ, खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
0: बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
1: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है, उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
0: खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
2: अरे साहब, बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
0: मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है, जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
2: देखिए, मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
0: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी, थक गया। मगर मेहनत सफल हो गई, आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से, पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा, क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे, राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा। चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला,
3: अरे ये क्या करते हो बाबूजी, आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का, लाइए मैं काट देता हूं।
0: मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह। जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
3: ये पत्तियां कहां रख जाऊं।
0: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
3: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे? चलिए मैं रख देता हूं।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रिकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
5: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार: दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार अंत में, जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं, ये सोच कर कि ये आसान होगा। परिणाम, बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है, जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लिखकर दीजिए इन्होंने।
6: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु हैं जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लेकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है, यहाँ से लिखा है इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
0: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और उसके साथ ही ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति का भी दिन है। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था
1: जी। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर है। ये दिन जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है, यानी कि जो हमारी तकनीकी है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे वैज्ञानिक, इंजीनियर जो भी योगदान देते हैं तो उनको एक कहना चाहिए एक सम्मान देने के दिवस मनाया जाता है। और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है। तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं गीत

0: देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है। तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आजादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी, मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं। हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुंच जाती परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है, जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज्यादा फ्रीडम महसूस करते
0: जी
1: हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है, जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहां एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है। आप खुले खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने
0: बिल्कुल
1: देखा है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो
0: जी
1: सहेलियां थी, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे,
0: उनकी
1: और
0: डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे, और रूठना मनाना तो चलता था।
1: चलता ही
0: लेकिन
1: था।
0: रिश्तों में क्या होता है, जब कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में भी खटास
1: तो
0: आती है,
1: आती
0: लेकिन
1: है, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं
0: हाँ
1: समझती हूँ, अगर दोस्ती में खटास आती है तो
0: जी
1: कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब
0: बिल्कुल
1: दोस्ती में खटास आती है। वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्त ही रहते हैं।
0: दोस्ती रहती है।
1: जहां दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ या
0: स्वार्थ उनके
1: मन में कुछ
0: अंदर,
1: था।
0: बिल्कुल सही
1: वरना
0: बात
1: आज भी हमारी कुछ सहेलियां या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम
0: जी
1: बात करती हो ना, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: उनसे कोई स्वार्थ नहीं है।
0: बिल्कुल। सौ की सीधी एक बात कि आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या, जलन है, तो
1: तो आप
0: अहंकार
1: नहीं
0: है,
1: निभा
0: तो आप
1: पाओगे,
0: दोस्ती नहीं निभा
1: नहीं निभा
0: पाएंगे, है ना।
1: पाओगे।
0: तो हमारे
1: दोस्ती शब्द तो बहुत बड़ा है
0: बहुत बड़ा
1: मंजरी।
0: है
1: मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते,
0: जी,
1: जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं।
0: आ गई जी,
1: लेकिन अगर वो नहीं आई हैं तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया, तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है। और बहुत अच्छी
1: बिल्कुल।
0: बात है, जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप है या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं, पुराने पुराने कहाँ गए कहाँ
1: हाँ,
0: गए,
1: सही बात है।
0: है
1: कुछ
0: ना।
1: मित्रों ने हमें खोज लिया, अरे आप
0: हाँ
1: कहाँ रहती हैं, आप वही मंदाकिनी है
0: हमने
1: जो
0: खुद ही
1: कभी साथ
0: ढूंढ
1: पढ़ा करती थी,
0: जी
1: तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है ये कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी,
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात
1: वो
0: है,
1: एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहाँ
0: बिल्कुल
1: उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है।
0: कुछ भी नहीं, अगर
1: तो
0: वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ समझ
1: समझ लिया।
0: लिया।
1: तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाए तो समझ
0: बहुत
1: लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है ना।
0: जी।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं, रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधनकारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त हैं। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं, और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं, इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावनात्मक रिश्तों से ज्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज्यादा होती। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी इन्होंने।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दौर में रिश्तों रक्त संबंध से ज्यादा दोस्तों का करीब होना एक आम हकीकत बन गया है। इसके पीछे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कई कारण हैं। यहाँ कुछ मुख्य वजह हैं, क्योंकि दोस्त अक्सर परिवार से ज्यादा करीब होते हैं बिना शर्त स्वीकृति के। दोस्त हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, और रिश्तेदारी में अक्सर अपेक्षाएं, सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक रहते हैं, स्वैच्छिक संबंध होते हैं। परिवार हमें मिलता है लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारी रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी रहती है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खून के रिश्तों से ज्यादा करीब और गहरी होती है, जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिसे हम खुद को चुनने का मौका मिलता है। जो रिश्तेदार से ज्यादा असरदार होता है, इसमें शुक्रिया या सॉरी की औपचारिकता नहीं होती, जबकि बेहद अनौपचारिक और सुकून देने वाली होती है। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते बहुत मिलते हैं पर सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, है ना। और कहें तो एक गाना सुनवाएं पहले।

0: तो हाँ तो मंजरी बताइए, हमारे दोस्ती में और क्या क्या होता है?
1: दोस्ती में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं और कभी कभी एक साथ घूमने भी जाते हैं, तो दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है क्योंकि आपस में खर्चे भी शेयर कर लेते हैं, है ना?
0: मतलब दोस्ती में भी हम खर्चा देखते हैं? भाई देखते, मुझे नहीं लगता दोस्ती में हम खर्चा देखते ही नहीं है।
1: आजकल दोस्तों में क्या होता है कि चल थोड़ा तू लगा थोड़ा मैं लगा, ऐसा करते हैं और खूब इंजॉय कर लेते हैं।
0: मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें सारा खर्चा करना पड़ेगा।
1: देखती हूँ, चलिए ठीक है कर लेंगे। और हमारे साथी लिखते हैं, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह? मुझे लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों को बनाए रखना जरूरी है। दोस्ती में विश्वास और समझ होती है जबकि रिश्तेदारी में प्यार और बंधन होता है।
0: ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं, रिश्तेदारी में भी कई लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं जिनसे बहुत लंबे समय तक हमारा नाता जुड़ा होता है। एक हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे हमें आधार देते हैं, लेकिन मित्रता उस ठंडी छांव की तरह है जो सफर की थकान मिटा देती है। मित्र करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं, और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वहीं सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहां वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और ऐसे हमारे साथी और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए रिश्ते हैं जो जहां दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, लेकिन मित्रों के साथ हम अपनी रूह से जुड़े होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा बेहतर समझ ले, शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज्यादा करीब महसूस होते हैं। बहुत सुंदर,
0: बिल्कुल सही। और एक आखिरी हम और ले लेते हैं, उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा अपेक्षाओं का बोझ होता है, वहां गलतियों पर टोकने या उपदेश देने का डर रहता है, लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं। मित्रता में जज किए जाने का डर कम और स्वीकार किए जाने का एहसास ज्यादा होता है।
1: जी
0: है ना,
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। तो हम लोग सुनते हैं,
0: हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम उन्हें गीत

0: तो मंजरी भाई, ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें, कि दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है, और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता है। तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठ कर खाते हैं तो कितना मजा आता है ना।
1: जी बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन है हमारे, दाल पीठा और सत्तू का शरबत। तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखते हैं कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है, लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगोकर लहसुन मिर्च के साथ पीस कर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है, फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं, इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं, या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने चने का, भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही हैं चने की दाल से, तो इसी तरह का है, बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना,
0: नहीं आप पढ़िए ना, क्या कह रही
1: हैं कि सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू दो तीन तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना मसूर मक्का जौ होता है, जिसे लोग कहते हैं लोग खाते हैं। सतुई यह सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है, यानी सत्तू और सतुई। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो हमें पता चल गया कि हम
0: दोनों में क्या फर्क होता है।
1: हाँ,
0: जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है कि बिहार की व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई।
1: क्या बात यानी आप इतने से ही निकल ली
0: तो अगली बार आप मेरी अच्छी दोस्त है ना
1: जी,
0: तो अगली बार आप ये सत्तू और सतुई बनाकर लेकर आने वाली हैं। ठीक है, तो अब सुन लेते हैं गीत।

0: तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त अब पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
0: प्यार भरा
1: नमस्कार, नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुत करता अनिश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में सतत खनन और पारिस्थितिकी बहाली पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ जिम्मेदार खनन की आवश्यकता पर जोर दिया। नक्सल मुक्त होने के बाद अब गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ विकास की राह पर है। राज्य की गृह सचिव वंदना दादिल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 14 मई को इस क्षेत्र का दौरा करेंगी। वे बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट योजना की समीक्षा और नई परियोजनाओं को लागू करने के लिए बैठक करेंगी। जमशेदपुर के एग्रिको में टाटा स्टील के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी पत्नी बेटे और गर्भवती बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी रविंद्र सिंह रात भर शवों के साथ घर में रहा और सुबह खुद ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ पुलिस ने गोला थाना क्षेत्र में चल रही अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि एसआईटी की छापेमारी में 250 पेटी शराब, भारी मात्रा में स्पिरिट और नकली स्टिकर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना के तहत मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों में सघन जांच अभियान चलाया। राजनगर में छापेमारी के दौरान कई संस्थानों में हेल्थ प्रोफाइल और जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। हेंसल स्थित आयुषी क्लिनिक अवैध रूप से संचालित पाया गया। विभाग ने दोषी संस्थानों को नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। और मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित कई जिलों में अगले 24 घंटों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की और वज्रपात की आशंका जताई है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सारी बीमारियां पहले से हैं, पर हमें वो कभी ज्ञात हुई यह ज्यादा जरूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहां से आया? द वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है। थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू
2: जी।
1: तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसी के आजू बाजू में पाई गई। और एमिया मतलब खून की बीमारियां। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर के आजू बाजू में कंट्रीज थी इसमें ये पाई गई। लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियां पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्र

0: तज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में छठे दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जैसे अपना ज्ञान बढ़ते गया और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चला गया है। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था तो वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में कुछ कुछ जगह पर ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है वहां की जो जनता भारत में स्थलांतरित माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद में, तो सिंधीज और पंजाबीज में ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है। नॉर्थ रीजन में गुजरात में यही बीमारी पाई जाती है, महाराष्ट्र में, नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी पाई जाती है। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में ये बीमारी इतनी ज्ञात नहीं थी। लेकिन
1: अच्छा, लेकिन मध्य भारत जो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है?
0: देखिए कैसे होता है कि ये जो बीमारी है अपने हीमोग्लोबिन यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं है उससे निगड़ित होती है, तो मध्य भारत में इसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है। मध्य भारत में सिकल सेल नाम की एक बीमारी होती है, ये बीमारी और थैलेसीमिया जब एक साथ आते हैं तो एक सिकल थैलेसीमिया नाम की नई बीमारी जन्म लेती है। आज के दौर में जहां पे माइग्रेशन इज वेरी कॉमन, हर जगह पे सब लोग अपने काम की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेशन करते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए अभी उतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है इस बीमारी के बारे में।
1: डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी को अगर हम तौलें और एक अनुपात लगाएं तो क्या पाते हैं आप, कितना प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है?
0: देखिए पूरी भारत दुनिया का हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो पूरी दुनिया में करीबन हर साल 1,00,000 बच्चे पैदा होते हैं जो है जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होते हैं, और इसमें भारत का है ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हर साल। तो 10,000 बच्चे जो होते हैं हर साल थैलेसीमिया मेजर यानी पूरा थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं एक टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन होता है कि जो ऊपर दिखता है उससे तो काफी गुना तो नीचे होता है पानी के। क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया आधा ही होता है, जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, इनका जो होते हैं इनको थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर 25 के पीछे एक थैलेसीमिया कैरियर होगा।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती जाती है। अगर हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से और हर साल ऐसे ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल जो थैलेसीमिया का पूरी तरह से उपचार न होने के कारण ये बच्चे उम्र के 15 से 20 साल में गुजर जाते हैं, तो भी हर वर्ष करीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं इंडिया में।
1: देखा जाए तो ऊपरी तौर पर एक अनुपात बताया आपने। हम आगे बढ़ेंगे और थैलेसीमिया बीमारी का जो स्वरूप क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम चाहते हैं कि कोई संगीत की बात हो जाए, तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगे?
0: देखिए हिंदी संगीत तो जैसे श्रवणीय रहा है और आप जानते हैं पुराने दशक में जितने पुराने अच्छे गाने रहे, देवानंद जी उनमें से मेरे एक फेवरेट रहे हैं, तो उनका ही प्रेम पुजारी पिक्चर का फूलों के रंग से ये गाना मैं सुनना चाहूंगा।

दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो दुनिया की हलचल, ये चहकती दुनिया, ये बदहवास दुनिया, ये थकी हुई दुनिया। दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो कितनी तरह की है ये दुनिया। इस दुनिया में हैं धक्के मारते लोग, कंधे छीलते लोग, धोखा करते लोग। ये दुनिया उदासियों की महफिल है।

समंदर, एक अनंत विस्तार है समंदर, जाने कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। समंदर का किनारा लगता होगा रूमानी कुछ लोगों को, समंदर उदास करता है हमें, उदासी की लहरें आती हैं एक के बाद एक और बस सराबोर कर जाती हैं। सुरमई शाम, उदास समंदर, थका हुआ सूरज, बोझिल हवा और गूंजता हुआ ये नगमा।

आंखें बोलती हैं सब कुछ। कहते हैं कि अल्फाज अपनी बात कहने का सबसे कमजोर तरीका है। सबसे अच्छी बातें वो हैं जो खामोशी में कही जाती हैं। बातें करती हैं हमसे तुम्हारी आंखें। तुम्हारी आंखों के दियों से रोशन है हमारा संसार, और इन आंखों के गीत हमारी दुनिया में मिठास खोलते हैं।

0: आज के छाया गीत में थे तलत महमूद के नगमे। फिल्मों के नाम,
1: तेरी आंख के आंसू पी जाओ,
0: फिल्म जहां आ रहा,
1: शामे गम की कसम आज गमगी है हम,
0: फिल्म फुटपाथ,
1: मेरे दिल कहीं और चल,
0: फिल्म दाग।

فيلم ولي اعزب. आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रमिक लोक।
1: आप विविध भारती का प्रसारण सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये मुंबई के, माफ कीजिएगा, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, FM 103।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 5:35 पर आप सुनिएगा महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन, 6:02 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी, 6:30 होगा कृषक और संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा, 7:15 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का और 8:00 आप सुनिएगा कार्यक्रम कल्याणी। रजनीगंधा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00 और हर रोज की तरह सभा की समाप्ति होगी रात्रि 11:00।

0: श्रोता बहनों, अभी आपने सुना इस खूबसूरत से नगमे को, आइए सुनते हैं एक वार्ता घर के नंद सजा। वार्ताकार है नेहा सिन्हा।
1: घर की अंतःसज्जा दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे सुंदरता, शांति और मॉडर्नाइजेशन का मिलान एक साथ हो जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो आजकल हर तरफ डिमांड में है। दुनिया के हर कोने में यह अपनाई जा रही है। आज के युग में लोगों का चाव बढ़ता जा रहा है अपने घर और ऑफिसेस को सुंदर बनाने में। वे ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि उनका घर सुंदर दिखे और लोग उसकी तारीफ करें। यहाँ तक कि घर और ऑफिसेस का अट्रैक्शन ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग की वजह से बढ़ता जा रहा है, और यह दर्शाता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का महत्व आजकल के दैनिक जीवन में। इंटीरियर डिज़ाइनिंग हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि घर में कैसे हम फर्नीचर्स को एडजस्ट करें। घर को स्पेशियस बनाने के लिए हम डिज़ाइनिंग को यूज़ कर सकते हैं, और इससे हमें अपना घर काफ़ी साफ और खाली खाली लगता है, और हमें फील होता है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें घर में मिली हैं, हम उनका आसानी से प्रयोग कर पा रहे हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग से हमें घर की सभी वस्तुओं एवं चीज़ों को एक विचारधारा के तहत देखते हैं। जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं, वे एक दूसरे नज़रिए से सोचते हैं और देखते हैं, क्योंकि अपनी पढ़ाई और वर्क एटमॉस्फेयर की वजह से वे टेक्निकली इसका आंकलन करते हैं। अलग अलग तरह के घरों और जगहों को डिज़ाइन करने से या देखने से हमें सहायता मिलती है अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में। डिज़ाइनर्स जो भी कार्य करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें, ताकि उनकी काम की सराहना की जा सके। घर की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है मॉडर्नाइजेशन के इस्तेमाल करके। उसके लिए अपने बेडरूम्स, किचन्स और टॉयलेट्स को करीने से डिज़ाइन करें, और सुंदर टाइल्स, हाइलाइटर्स और दीवारों की रंगों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक कला है, और इस कला की घर की स्त्रियों से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। इस कला के द्वारा हम अपने आसपास की सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं। यह हमारी पर्सनालिटी और डेली लाइफ को दर्शाता है। कोई भी अगर चाहे तो अपने घर को सुंदर बना सकता है, अगर अपने घर के अपीयरेंस में थोड़ा सा बदलाव ला सके। सारी वस्तुओं का रखरखाव ठीक से करें, यहाँ तक कि जब आप फर्नीचर्स खरीदें तो उनके रंगों का चुनाव भी सोच समझ कर करें। अपने फैमिली के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें लें, और सारी चीज़ों के रंगों का विशेष ख्याल रखें। जब भी आप फर्नीचर्स, पर्दे, कारपेट लें तो हमेशा क्वालिटी का भी ख्याल रखें। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए उस वस्तु के प्रति जो आप खरीदें अपने घर के लिए। डिज़ाइन एक बहती नदी की तरह होता है जो समय समय पर बदलता रहता है।

जाती है। कर्टन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कमरों की आउटलाइनिंग और लुक प्रदान करने में। कर्टन्स वे होते हैं जो हमारे विंडो लेंथ तक के लिए बनाए जाते हैं, और ड्रेप्स फ्लोर लेंथ के होते हैं, उनमें फ्लैनल लाइनिंग ज़्यादा होती है। या फिर अगर कमरे में रोशनी कम आती है तो आप सैश कर्टन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सिर्फ लाइट फिल्ट्रेशन हो जाता है। ये ज़्यादातर अनलाइंड होते हैं और कमरे को नया लुक प्रदान करते हैं। कारपेट सबसे आसान और वर्सेटाइल आइटम होते हैं घर के डेकोरेशन के लिए। रग्स और कारपेट्स का इस्तेमाल फ्लोरिंग के लिए किया जाता है। ये कमरों के ज़मीन की सुंदरता बढ़ाते हैं, साथ ही अकूस्टिक मटेरियल का खर्च कम कर देते हैं। टेक्सचर्ड रग और शैगी रग्स कारपेट रूम में सॉफ्टनेस लाते हैं। जिन रूम्स में ज़्यादा वुडन और मेटल आइटम्स होते हैं और ज़्यादातर कारपेट और रग्स नेचुरल चीज़ों द्वारा बनाए जाते हैं, यह हमारी सहायता करते हैं ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने में। अंतःसज्जा या इंटीरियर डेकोरेशन आज के समय में मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, और आने वाले समय में इसका प्रचलन और बढ़ता जाएगा। घर हो, ऑफिस, मॉल्स, शॉप्स, बिल्डिंग्स, गार्डन्स, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, हर जगह इंटीरियर डिज़ाइनिंग की आवश्यकता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे जगह भी बचाई जा सकती है और सुंदरता को भी प्रोत्साहन मिलता है। अगर सारी वस्तुओं को ठीक से संयोजित किया जाए और एक प्लान लेआउट के तहत घर में रखा जाए तो घर में कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि घर भरा हुआ है और फर्नीचर्स और बाकी चीज़ें भी हैं। घर की महिलाओं को चाहिए कि वे अपने कला को उभारें और वस्तुओं के चुनाव पर विशेष ध्यान दें। वैसी चीज़ें लें जो अच्छी भी हों और जिनसे घर की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। अगर घर में जगह कम हो तो हमेशा मल्टी स्पेस सेविंग फर्नीचर्स खरीदें और उनके रखरखाव का विशेष ख्याल रखें। घर में रहने वाली महिलाएं ही अपने घर को सुंदर एवं स्वच्छ बना सकती हैं। हर महिला अंदर से एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। बस ज़रूरत है इस कला को बाहर निकाल कर दर्शाने की।

श्रोताओं श्रोता बहनों, इसी गाने के साथ आज का घर आंगन कार्यक्रम में ही समाप्त होता है। खुशी पलों में आकाशवाणी रांची केंद्र से आप सुनेंगे शाम के 6 बजे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट था। जामताड़ा में आज आदिवासी पारंपरिक वाद्य यंत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जिले के कला केंद्रों और धुमकुड़िया भवनों के लिए ढोल, नगाड़ा और मांदर जैसे वाद्य यंत्रों का वितरण किया। रांची विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने क्लस्टर सिस्टम का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कुलपति के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर इस व्यवस्था को तत्काल निरस्त करने की मांग की। परिषद का आरोप है कि क्लस्टरिंग से शिक्षा का केंद्रीकरण होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब छात्रों और छात्राओं को भारी परेशानी होगी। साहिबगंज के उपायुक्त ने NH80 को जर्जर स्थिति से उबारने की पहल की है। उन्होंने बताया कि मदन साही के पास सड़क को फिलहाल चलने लायक बनाने के लिए समतलीकरण किया गया है। देवघर के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जिले की प्रमुख रेल, सड़क और कोयला परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन और देवघर बासुकीनाथ राजमार्ग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। सरायकेला के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही बरतने के आरोप में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शिवलाल कुंकल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 3 ANM का तबादला भी किया गया है। देवघर पुलिस ने मोबाइल लूट और चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 11 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साहिबगंज के नगर पालिका कन्या उच्च विद्यालय में आज मेरा युवा भारत की ओर से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को तकनीक और डिजिटल नवाचार के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। फिर 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेत।

खेती बाड़ी सुनने वाले तमाम किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, खेती बाड़ी इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे बातें करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर, फिर आपसे बातें होंगी गर्मा मूंग की खेती में कीट प्रबंधन पर, और फिर उसके बाद हम एक वार्ता भी सुनवाएंगे अविनाश चंद्र प्रसाद का, विषय होगा वृक्षारोपण का महत्व। तो चलिए अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और साथ ही किसान भाइयों आनंद लेंगे एक लोकगीत का भी। तो चलिए अब हम किसान भाइयों कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। जी हाँ किसान भाइयों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई

जो 2015-16 में शुरू हुई थी, उसका मुख्य उद्देश्य हर खेत को पानी प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करना है। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि यह योजना सिंचाई कवरेज बढ़ाकर पानी की बर्बादी कम करने के लिए ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देकर और जल संरक्षण के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। सिंचाई भाइयों, इसका उद्देश्य जो है सो सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार, खेत स्तर पर पानी की दक्षता में सुधार और जल संचयन है। जी हाँ किसान भाइयों, साथ ही साथ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम हर खेत को पानी के प्रति बूंद अधिक फसल करना भी है। साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए छोटे किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता भी करना है। हम आपको बता दें किसान भाइयों की सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक के लिए इसे मंजूरी दे दी है। और किसान भाइयों, अब जो है सो हम आगे बढ़ते हैं और फिलहाल एक सुनते हैं लोकगीत।

किसान भाइयों, अब बातें करते हैं हम गर्मा मूंग की खेती में कीट प्रबंधन पर। तो चलिए हम आपको बता दें किसान भाइयों कि गर्मा मूंग की खेती में कीट प्रबंधन के लिए बुआई से पहले बीजो उपचार जो है और सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स के लिए उचित कीटनाशकों का प्रयोग करना जरूरी है, आवश्यक है। मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी, तना मक्खी और फली छेदक कीट नुकसान पहुँचाते हैं, तो इसके लिए डायफेनथ्यूरेस या इमीडाक्लोप्रिड का छिड़काव करना करके आप उससे बचाव कर सकते हैं। ये जो है 60-65 दिनों में बंपर पैदावार प्राप्त की जा सकती है अगर इनका छिड़काव आप करते हैं तो। साथ ही किसान भाइयों, यह मूंग की फसल गर्मा मूंग में जो प्रमुख कीट और उसका प्रभावी प्रबंधन है, हम आपको बता दें कि सफ़ेद मक्खी जो है यह मूंग की फसल का सबसे प्रमुख कीट है जो पत्तियों का रस चूसता है और पिल्ला मोज़ेक वायरस फैलाता है। इसके नियंत्रण के लिए वही आप करें कि डायफेनथ्यूरोन 50% और साथ ही या एसिटामिड्रिट जो है 40 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर दें तो इससे जो है राहत हो जाएगी। और उसी तरह तना मक्खी के लिए यह तने के अंदर जो छेद कर को फसल को सुखा देती है, तो इसके लिए क्या करें आप कि बीज उपचार के लिए जरूरी है इमीडाक्लोप्रिड 3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप उस पर छिड़काव करें। और फली छेदक जो है कीड़ा, ये फली के अंदर जाकर दानों को खाते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करें कि NCIPM के अनुसार एसएफएट 75 SP या 1 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें, तो इससे जो है इसका नियंत्रण हो जाएगा। उसी तरह थ्रिप्स है जो पत्तियों को सिकोड़ कर खराब कर देते हैं, ये भी एक जो है कीट है, तो इसके लिए आप जो है क्या करें कि इमीडाक्लोप्रिड का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। और इस तरह से एकीकृत कीट प्रबंधन के उपाय भी हैं जो हम आपको बता दें किसान भाइयों कि बुआई बीज उपचार के लिए बुआई से पहले बीजों को कार्बेडाजिम 2 ग्राम या थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। और साथ ही पीले चिपचिपे कार्ड के लिए सफ़ेद मक्खी की निगरानी और नियंत्रण के प्रति 8 से 10 पीले चिपचिपे कार्ड को लगाएं। और खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 15-20 दिनों के बाद खरपतवारों को नष्ट करें, क्योंकि ये कीटों को शरण देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए कि ये कीटों को शरण देते हैं, इसलिए खरपतवार को जो है सो आप उसका नियंत्रण करें। और साथ ही गर्मा मूंग को 4-5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, इस पर भी दे जल प्रबंधन पर कि जल भराव न होने दे, अन्यथा जड़ जो है सड़न रोग हो सकता है, जड़ सड़ के इसमें सड़न रोग हो सकता है, तो इसका भी आप ध्यान दें।

0: और इस तरह से किसान भाइयों, गर्माऊं पर अगर आप ध्यान देते हैं और करते हैं तो निश्चित ही आपकी खेती जो है बहुत अच्छी होगी इसकी। और अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक वार्ता। वार्ताकार है अविनाश चंद्र प्रसाद और विषय है वृक्षारोपण का महत्व।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो न केवल हमें वर्तमान बल्कि आने वाले भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वृक्षारोपण का महत्व। श्रोताओं, पेड़ पौधे प्रकृति का अनमोल उपहार है। वे हमें जीवन देते हैं क्योंकि वे हमें शुद्ध वायु, छाया, भोजन और औषधियाँ प्रदान करते हैं। यदि हम यह कहें कि वृक्ष है तो जीवन है तो यह बिल्कुल सत्य होगा। पहले बात करते हैं वायु शुद्धिकरण का। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में जब प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, वृक्ष ही हमें स्वच्छ हवा प्रदान करने का सबसे सरल और प्राकृतिक माध्यम है। अब हम समझते हैं कि जलवायु संतुलन में वृक्षों की भूमिका। पेड़ वातावरण के तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। वृक्षों की कमी के कारण आज ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। श्रोताओं, मिट्टी संरक्षण में भी वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है जिससे कटाव नहीं होता। यह पेड़ नहीं होते वहाँ बाढ़, भूस्खलन जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है। जल संरक्षण में भी वृक्ष की अहम भूमिका होती है। वे वर्षा के पानी को भूमि में समाहित करने में मदद करते हैं जैसे भूजल स्तर बना रहता है। जंगलों के क्षेत्रों में नदियों और झरने अधिक समय तक बहते रहते हैं। अब बात करते हैं जैविक विविधता। पेड़ पौधे अनेक जीव जंतुओं का घर होते हैं। पक्षी, कीट, जानवर सभी वृक्ष पर निर्भर रहते हैं। यदि पेड़ कटते हैं तो उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। श्रोताओं, वृक्ष हमें आर्थिक लाभ देते हैं। फल, लकड़ी, गोंद, औषधि पौधे, ये सभी हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं और रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही पेड़ हमारे मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। हमारे भरे वातावरण में रहने से तनाव कम होता है और मन प्रसन्न होता है। पार्क और बगीचे हमारे जीवन को सुंदर और संतुलित बनाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि आज तेजी से हो रही कटाई के कारण हमारे वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। यदि यह स्थिति जारी रही तो आने वाली पीढ़ी को गंभीर परिणाम भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाएं। आइए जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पेड़ लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। स्कूल, कॉलेज, गांव और शहर में वृक्षारोपण अभियान चलाना चाहिए। बच्चों को बचपन में ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए। श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि वृक्ष केवल प्रकृति की शोभा नहीं है बल्कि हमारे जीवन की आधारशिला है। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया एक गंभीर पर्यावरण संकट का सामना कर रही है। बढ़ता प्रदूषण, घटते वन और असंतुलित जलवायु, ये सभी संकेत हैं कि हमने प्रकृति के साथ संतुलन खो दिया है और इस संतुलन को फिर से स्थापित करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है वृक्षारोपण। अब बात करते हैं शहरी जीवन में वृक्षों की भूमिका की। आज शहरों में कंक्रीट के जंगल तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे ऐसे में पेड़ हमें ग्रीन लंग्स यानी हरित फेफड़ों की तरह काम करते हैं। वे प्रदूषण को कम करते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं और शहरों को रहने योग्य बनाते हैं। वृक्ष और वर्षा का संबंध भी बहुत गहरा है। जहाँ अधिक वृक्ष होते हैं वहाँ वर्षा भी संतुलित होती है। जल वापस और

वातावरण में छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। इसलिए वृक्षारोपण सूखे की समस्या को भी कम करने में सहायक है। श्रोताओं, हमें सामाजिक जिम्मेवारी के रूप में भी वृक्षारोपण करना जरूरी है। जन्मदिन, विवाह या किसी भी विशेष अवसर पर पौधे लगाना एक सुंदर और सार्थक परंपरा बन सकती है। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए यह हरा भरा भविष्य भी सुनिश्चित होगा। अब बात करते हैं शिक्षा और जागरूकता की। स्कूल में बच्चों को वृक्षारोपण का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। यदि बचपन से ही यह संस्कार दिया जाए तो वे बड़े होकर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। प्रौद्योगिकी की और वृक्षारोपण भी आज समाज साथ साथ चल सकते हैं। ड्रोन के माध्यम से बीज बोने की नई तकनीक विकसित हो रही है, जिससे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण संभव हो रहा है। श्रोताओं, हमें यह भी समझना चाहिए कि केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी देखभाल नहीं होने के कारण वे सूख जाते हैं। इसलिए नियमित रूप से पानी देना, सुरक्षा करना और सही स्थान पर पौधे लगाना अत्यंत जरूरी है। स्थानीय देसी पौधे का चयन भी महत्वपूर्ण है। ये पौधे तो स्थानीय जलवायु में आसानी से पनपते हैं और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे उनकी जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। श्रोताओं, वृक्षारोपण केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करता, बल्कि यह हमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है। हमारे देश में पीपल, बरगद, तुलसी जैसे वृक्षों को पूजनीय माना गया है। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के प्रति महत्व को भली भांति समझते थे। अब समय है कि हम फिर से उसी परंपरा को अपनाएं और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें। अतः मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, न केवल वृक्ष लगाएंगे बल्कि उसकी देखभाल भी करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। याद रखिए, एक पेड़ 100 समस्याओं का समाधान है। हरियाली ही खुशहाली की असली पहचान है। श्रोताओं, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पेड़ पौधे के पास रहने से हृदय रोग, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का खतरा कम होता है। अस्पतालों में भी देखा गया है कि जिन कमरों की खिड़की से हरियाली दिखती है वहाँ मरीज जल्द स्वस्थ होते हैं। पेड़ प्राकृतिक एयर प्योरीफायर है, जो धूल, धुआं और हानिकारक गैस को सोख लेते हैं। चक्रवात, सुनामी और तेज आंधियां में पेड़ सुरक्षा कवच का काम करती है। समुद्री तटों पर मैदानी इलाकों में पेड़ों की कतार तेज हवाओं को रोकती है और फसलों को बचाती है। इसलिए वृक्षारोपण आपदा से बचाव का सबसे सस्ता और टिकाऊ उपाय है। श्रद्धालुओं, महुआ, तेंदुआ पत्ता, लाह, बांस, ये सभी वन उत्पाद लाखों आदिवासी और ग्रामीण परिवारों की आजीविका का साधन है। शहद उत्पादन, रेशम कीट पालन, आयुर्वेदिक दवाइयाँ सब वृक्षों पर निर्भर है। एक वयस्क पेड़ अपने जीवन काल में लाखों रुपए की ऑक्सीजन और पर्यावरण सेवाएं मुफ्त देता है। आज दुनिया के गरीब देश जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं, जैसे प्रदूषण फैलाने से उनकी भूमिका सबसे कम है। वृक्षारोपण एक ऐसा कार्य है जिससे हर व्यक्ति कर सकता है। यह जलवायु न्याय की दिशा में हमारा छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। हमारे वेदों में कहा गया है, वृक्षो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो वृक्षों की रक्षा करते हैं वृक्ष उनकी रक्षा करते हैं। कालिदास से लेकर सुमित्रा नंदन पंत तक सभी कवि ने वृक्षों को जीवनदाता कहा है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में हर छात्र से एक पेड़ लगवाया था। जापान की इस तकनीक से छोटे स्थान पर 10 गुना तेजी से घने जंगल उगाए जा रहे हैं। भारत के कई शहरों में अब अर्बन फॉरेस्ट बन रहे हैं। श्रोताओं, सोचिए, जिस दिन आप पैदा हुए थे किसी ने आपके नाम का एक पेड़ लगाया होता, आज 20-25 साल के बाद वह पेड़ आपको छाया देता

0: फल देता। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसी ही सौगात नहीं दे सकते? एक पेड़ लगाने का मतलब भविष्य में निवेश करना है। आज लगाया गया पीपल का एक पौधा 100 साल बाद भी लोगों को ऑक्सीजन देता रहेगा।
1: किसान भाइयों, अभी आपने सुना अविनाश चंद्र प्रसाद की वार्ता, विषय था वृक्षारोपण का महत्व। और अब इस वार्ता के बाद आइए एक बार फिर से हम आनंद लेते हैं एक लोकगीत का, भरत सिंह भारती की ही आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। ग्रामीण सभा सुनने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे आपसे सबसे पहले पशुओं के लिए आहार व्यवस्था पर, और साथ ही आप आज की बात में सुनिएगा अंतर्वर्ती खेती के लाभ। तो चलिए फिलहाल हम बातें करते हैं पशुओं के लिए आहार व्यवस्था पर। जी हाँ किसान भाइयों, पशुओं यानी कि गाय भैंसों के लिए संतुलित आहार में 50% हरा या सूखा चारा और 50% दाना मिश्रण जैसे खल, अनाज, चोकर, खनिज वगैरह शामिल होना चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, इसे होता है क्या है कि दुधारू पशु को प्रति लीटर दूध पर 300 से 400 ग्राम अतिरिक्त दाना और प्रतिदिन 30 से 35 ग्राम खनिज मिश्रण देना आवश्यक है, जो स्वास्थ्य और दूध उत्पादन बढ़ाता है। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि संतुलित दाना मिश्रण में जैसे खलियां यानी कि मूंगफली, सरसों, बिनौला 25 से 35%, अनाज में मक्का, गेहूं, जौ 25 से 35% और चोकर में हो गया आपको कि चोकर या चुनी में 10 से 30% का मिश्रण तैयार करना चाहिए। पशुओं को दलहनी यानी कि वर्सिम, ल्यूसर्स और गैर दलहनी ज्वार, मक्का वगैरह चारे का मिश्रण देना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन अच्छी गुणवत्ता का 30 से 35 ग्राम खनिज मिश्रण जरूर दें, जो फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी पूरी करता है। किसान भाइयों, पशुओं के लिए हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें साफ पानी की उपलब्धता हो, यानी कि सुनिश्चित करें स्वच्छ पानी दे, और साथ ही साथ दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एनडीडीबी द्वारा सुझाए गए बायपास प्रोटीन का उपयोग करें, और साथ ही ये भी ध्यान दें कि नियमित समय पर आप हमेशा आहार हमेशा एक ही समय पर यानी कि दिन में 2 से 3 बार दें। ऐसे यूँ कहा जाए तो एक आप चार्ट भी बना सकते हैं, जैसे हरा चना का 15 से 20 किलोग्राम और सूखा चारा यानी भूसा वगैरह 5 से 6 किलो, और दाने की मिश्रण की बात होती है तो हम आपको बता दें कि 1 से 5 या 2 किलो जीवन निर्वाह के लिए 400 ग्राम प्रति लीटर दूध पर आप दे सकते हैं। पशु के स्वास्थ्य और उम्र के अनुसार जो है आहार की मात्रा में बदलाव करें, और डॉक्टर की सलाह पर उन्हें जो है डाइट बदले, डॉक्टर से बात करें और उसके बाद उनका खाना पर ध्यान दें। तो इस ये तो बातें हुई पशुओं के लिए आहार व्यवस्था पर किसान भाइयों, और अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर थोड़ा, और आज की बात में आज बातें करते हैं आपसे अंतर्वर्ती खेती के लाभ पर। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें सबसे पहले कि अंतर फसल खेती का अर्थ है एक ही खेत में एक ही समय में कुछ फसल के साथ साथ एक या एक से अधिक सहायक फसलें उगाना। यह टिकाऊ खेती की एक प्रभावी पद्धति है जिसके कई आर्थिक और पारिस्थितिक लाभ है। तो अंतर्वर्ती जो है खेती के जो मुख्य लाभ है वो हम आपको बता दें कि यह पद्धति किसानों को 20 से 30% तक अतिरिक्त आमदनी दे सकती है। यदि मुख्य फसल जैसे गन्ना या अरहर किसी कारण से खराब हो जाती है, जो सहायक फसल जैसे सब्जियां, दालें से आय बनी रहती है, अगर खराब हो जाए तो ये सबसे आपकी आय बनी रहती है यानी कि मुनाफा देगी ही, जिससे कुल नुकसान जो है कम होता है, और इस तरह से जो पूरा नुकसान होने की चांस होती है उससे कुछ कम होता है, और एक ही ज़मीन में दो फसलें होने से संसाधनों का सही उपयोग होता है और प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ती है। किसान भाइयों, अब मिट्टी स्वास्थ्य सुधार की बातें करें इस तरह की फसल लगाते समय, तो आपको हम बता दें कि जब दलहनी फसलों जैसे मूंग, उड़द को मुख्य फसल के साथ लगाया जाता है तो इनकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। मिट्टी को हर समय ढककर रखने से मिट्टी का कटाव कम होता है और मिट्टी की नमी बनी रहती है। साथ ही किसान भाइयों,
रही बात खरपतवार नियंत्रण की, कीट और खरपतवार नियंत्रण की, तो इसमें हम आपको बताते हैं कि विभिन्न फसलें कीटों से के जीवन चक्र को तोड़ती हैं, जिससे हानिकारक कीट कम होते हैं और फसलों की सुरक्षा होती है। साथ ही जब खेत में दो या अधिक फसलें होते हैं तो वे ज़मीन को पूरी तरह ढक लेते हैं, जिससे खरपतवार को पनपने का मौका कम मिलता है, और ये भी एक लाभ हुआ इससे आपको। और अलग अलग जड़ संरचना वाली फसलें, जैसे कि एक गहरी जड़ वाली तो एक सतही जड़ वाली मिट्टी की विभिन्न परतों में पानी और पोषक तत्व लेती हैं, जिससे संसाधनों की बर्बादी नहीं होती है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम गन्ने के साथ आलू, मटर या सरसों लगा सकते हैं, अरहर के साथ मूँग या सोयाबीन, मक्के के साथ लोबिया। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि ये कृषि तकनीक न केवल किसान भाइयों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए अधिक लाभदायक है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, जो इसे आधुनिक समय में और भी महत्वपूर्ण बनाती है। जी हाँ किसान भाइयों, ये तो बातें हुई आज की बात में अंतर्वर्ती खेती के लाभ पर। अब चलिए हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और कृषि विशेषज्ञ क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र चिया की पलामू के अभिषेक पटेल से ली गई एक भेंटवार्ता सुनते हैं। विषय अनाज भंडारण की उन्नत तकनीक और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।

0: चल भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे फसल भंडारण की उन्नत तकनीक की। जी हाँ ग्रामीण बंधु, हम फसल तो उत्पादन कर लेते हैं और उसे सुरक्षित ढंग से हम भंडारण नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें कई तरह की परेशानियां सहनी पड़ती हैं। हमारी जो भंडारित फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, हमारी पूंजी बर्बाद हो जाती है। इसलिए भंडारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ग्रामीण भाई बहन, और कैसे भंडारण करें, कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकियां हम अपनाएं भंडारण के समय, इन तमाम बातों पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि विशेषज्ञ अभिषेक पटेल जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों को ये बताया जाए कि अभी जो भंडारण हमारे किसान भाई लगे हुए हैं भंडारण करने में फसलों को, तो क्या क्या सावधानियां बरतेंगे वो?
1: सर्वप्रथम किसान भाइयों, जैसे कि अभी मौसम आ रहा है कटाई का, तो कटाई सर्वप्रथम कटाई करने से पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा फसल पूर्णतः रूप से तैयार हो चुका है। क्योंकि किसान को क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारा फसल तैयार हो गया, हल्का से भी पीलापन दिखाई दिया खेत में तो वो कटाई चालू कर देते हैं, जबकि जो कि पूर्णतः गलत तरीका है। जब तक के फसल लगभग 80-90% पक न जाए तब तक उसकी कटाई न करें। कटाई करने के बाद उसको अच्छी तरीके से सुखा लें। अब उसको भंडारण करने के पहले उसके जो अगर गोदाम में रखना चाह रहे हैं तो उसका अच्छे तरीके से सफाई करें, और थैला मैलाथियान एक दवा होती है उसको घोल के उसके चारों तरफ छिड़काव करना चाहिए, जो भी आप गोदाम में उसको भंडारित करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास गोदाम नहीं है तो आप कोई भी टीन का बर्तन उपयोग कर सकते हैं, या तो एक चहर दीवारी टाइप का प्लास्टिक का बना दीजिए, उसके अंदर आप बोरा भर के सील पैक करके उसके अंदर सल्फास का गोली आता है, लगभग 1 टन पे 3-4 गोली पर्याप्त है, करके उसको रख दें और उसको प्लास्टिक को अच्छे तरीके से बंद कर दें और चारों तरफ गीला मिट्टी करके या तो गोबर का लेप लगा दीजिए, जिससे कि उसमें हवा प्रवेश न करे, जिससे कि आपका अनाज जो है कि सुरक्षित रहेगा। इसमें

0: होता क्या है कि आपका 5 से 6 प्रकार का कीड़ा जो है बहुत ही ज्यादा प्रकोप करता है। एक होता है कि सूड़ी, एक होता है घुन, एक होता है बीटल, एक होता है आपका राइस पतंगा।
1: अच्छा
0: जी जी, ये सब होता है। ये सब का होता क्या है कि जैसे घुन, घुन का क्या होता है कि जो जिसके आप अभी चना और गेहूं का हार्वेस्ट करके आप लोग रखते हैं किसान भाई, तो चना में देखते हैं जब आपको बुआई के समय निकालना होता है या बाद में बेचने के समय जब आप निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि छिद्र हो जाता है। ऊपर से पूरा सही रहेगा पर अंदर से छिद्र, अंदर से पूरा उसका खाया हुआ मिलता है। तो ये काम घुन का होता है। उसमें होता क्या है कि जब हल्का भी जैसे जब भंडारण करने जा रहे हैं आप तो उसमें कम से कम 5-10 से 12% नमी होना चाहिए। अच्छा। उसको देखने के लिए आप एक दाना मुख में डालिए, उसको फोड़िएगा तो कट से आवाज आना चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो समझ लीजिए कि पर्याप्त मात्रा में नमी है उसमें और वो अच्छी तरीके से सूख गया है। उसके बाद आप उसको भंडारित करिए। अगर उसमें नमी हल्का भी पाएगा या तो उसमें बाहरी जैसे हवा उसमें लग रहा है तो वो नमी पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा। नमी आते ही घुन का प्रयोग प्रकोप आने चालू हो जाएगा। उसके लिए आप लोग को मैलाथियन जो अभी आपको दवा बताए थे उसका घोल बना के चारों तरफ छिड़काव करिए। नहीं तो सल्फास का गोली आता है उसको आप रख सकते हैं। नहीं तो एक और दवा है जैसे कि DDVP को 100 ग्राम घोल के उसके साथ छिड़काव करिए।
1: अच्छा।
0: जी, उसके साथ होता क्या है कि आपका घुन जो है कि खत्म हो जाएगा, आपका फसल सुरक्षित हो जाएगा।
1: और ये तो मान लिए कि हम कर लीजिए जैसे, और भंडार गृह जो है जहाँ हम भंडारण कर, जैसे पक्के का मकान वगैरह में भी हमारे किसान भाई लोग रखते हैं तो उसमें क्या क्या सुविधा?
0: जैसे जैसे किसान पक्के भंडारण में रख रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले भंडारण करने से पहले 10 से 15 रोज पहले उसकी सफाई अच्छे तरीके से कर दें और उसके चारों तरफ देख लें कि अगर कोई छिद्र हो यानी आने जाने का तो उसको अच्छे तरीके से लॉक करें, या तो सीमेंटेड है तो उसको सीमेंटेड करें, नहीं तो मिट्टी का है तो मिट्टी से उसको बंद कर दें। जिससे कि आपको जैसे कि कीट में आता है एक आपका मूस काफी ज्यादा प्रकोप मारता है तो वो भी न प्रकोप कर पाए। उसके लिए अगर मूस का आ रहा है तो उसके लिए सल्फास या तो गंधक एक आता है उसको डाल सकते हैं जिससे कि मूस का प्रकोप धीरे धीरे कम हो जाएगा। और 15 से 20 रोज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको खुला छोड़ दीजिए, उसमें धूप हवा लग जाए जिससे कि बाहरी जो छोटा छोटा कीटाणु है जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता वो मर जाए। अब 10 से 15 रोज पहले उसमें दवा छिड़काव कर दीजिए जिससे, दवा छिड़काव जब उसमें करिए आप तो चारों तरफ उसको लॉक कर दीजिए जिससे अगर उसमें कीड़ा भी हो तो उसी में मर जाए। जिससे उसके बाद अगर आप किसान उसमें भंडारण के लिए रख रहे हैं ना तो उनका अनाज बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अब भंडारण करने से पहले कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे कि ये सब दवा बहुत ही जानलेवा दवा होती है। इसके लिए आप किसान भाई हाथ में प्लास्टिक के पन्नी पहन ले या तो कुछ भी कपड़ा लगा ले, अब मुख पे कपड़ा बांध ले या मास्क लगा ले, अब बच्चों से इसको दूर रखें क्योंकि इसका गंध ही बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि गंध के कारण ही कीड़ा मरता है तो इसलिए मानव शरीर में भी हानिकारक वो पहुंचा सकता है। इसलिए इस सब का सावधानियां बरतना चाहिए।
1: अच्छा।
0: और इसके रखने से पहले जैसे कि अनाज किस तरीके से उसमें रखें, अनाज पहले उसको अच्छे तरीके से साफ कर लें, सुखा लें, उसमें अगर टूटा हुआ दाना है तो उसको अलग कर लें क्योंकि टूटा हुआ दाना पे प्रकोप बहुत ही जल्दी आता है इसका सूड़ी का। और उसमें जैसे कि खखरी हो या छोटा हो दाना वो सब हो उसको अच्छे तरीके से छांट के रख लें, क्योंकि किसान भाई कुछ लोग होता है कि खाने के साथ साथ उसको अगले वर्ष लगाने में भी उपयोग करता है। इसलिए वो अनाज साथ साथ बीज दोनों काम करता है, इसलिए उसको अगर बीज के लिए कर रहा है तो उसको और ही सावधानी बरतना चाहिए। और जैसे बीज के लिए अगर उसको एक कट्ठा में लगाना है जैसे 30 किलो 25 किलो जो भी लगाना हो उसको एक अलग बोरी में रख ले, और बोरी एक प्लास्टिक कोटेड हो और उसमें सल्फास का एक गोली रखें और उसको अच्छी तरीके से सील पैक करें, उसके बाद उसको तब जाके रखें जिससे कि वो बाहरी हवा उसमें न जा सके। और उसमें जो है कि सूड़ी हुआ या घुन हुआ या बीटल हुआ ये सब का प्रकोप न हो जिससे कि आपका जो बीज है सुरक्षित रहे। और उसके बाद जब किसान को बीज लगाना हो अगले साल तो उसको लगभग 15 से 20 रोज निकाल ले जिससे वो सामान्य तापमान में आ सके। और उसके बाद उसको कहीं पे भी आए 10 से 15 दाना उसको कहीं लगा दे, अगर जर्मिनेशन ठीक हो रहा है तब उसको किसान लगाए तो उसको हानिकारक होने से बच सकता है, उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा।
1: अच्छा, बार बार ये टिकिया डालने की बात आ रही है तो टिकिया अनाज में मतलब खड़े

0: डाल देंगे कि उसको किस तरह से डालेंगे, उसकी विधि होगी?
1: टिकिया उसमें दो विधि से होता है। एक होता है कि आप घोल बना के डाल सकते हैं। अगर घोल बना के नहीं डाल सकते हैं तो वो फलफास का जो आता है गोली, वो पाउडर नुमा आता है, छोटा छोटा प्लास्टिक में 100 ग्राम का पैकेट ही आता है, वो पैकेट ही डालते हैं। उस पैकेट में बहुत ही हल्का छिद्र रहता है जिससे उसमें एयरनेस जो होता है उसका पास होता रहता है, गंध जो उसका स्मेल होता है वो पास होता रहता है।
0: अच्छा, खुला नहीं डालना?
1: खुला नहीं डालना है जी,
0: ये हमेशा ध्यान में रखना है जी, क्योंकि चूंकि जब भी टिकिया का, जब भी पाउडर का आप इस्तेमाल करें किसान भाई बहन, तो सावधानियां अवश्य बरतें। अगर जानकारी आपको नहीं है तो आप यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र या क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र से आप राय ले लें कैसे करना है, क्या करना है।
1: जैसे किसान भाई और कुछ लोग घरेलू नुस्खा भी अपनाते हैं, जैसे कि नीम का पत्ती हुआ, या तो नीम का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, नीम का खली का प्रयोग कर सकते हैं। इस सब का प्रयोग करने से भी आपका रोग मुक्त रहेगा, पर बशर्ते ये ध्यान देना है कि जैसे नीम का पत्ती या नीम का जो भी यूज कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से, जैसे नीम का पत्ती ले रहे हैं तो उसको बॉयल कर लें, या तो नीम का पत्ती एकदम सूखा हुआ डालें, हरा पत्ती कभी न डालें।
0: अच्छा
1: जी जी, एकदम सूखा हुआ पत्ती डालें, उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। अच्छा। इवन कि आपका हरा पत्ती की अपेक्षा।
0: अच्छा
1: जी,
0: और तो खैर अगर अनाज में भी मिल जाता है तो दिक्कत?
1: उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ, जब भंडारण से आप अगर निकाल के उसको खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से किसान भाई साफ करें, धो लें, उसके बाद सुखा तब उसको खाने में उपयोग कर सकते हैं।
0: अच्छा, बहुत बार ऐसा हमारे गांव में अभी भी प्रचलन है, कोठी में लोग अनाज को रखते हैं जो मिट्टी का बना हुआ होता है
1: जी,
0: कोठी बोलते हैं हमारे किसान भाई लोग, तो इसमें क्या सावधानी बरतनी है?
1: देखिए, जैसे किसान भाई कोठी में रखते हैं, कोठी को अच्छी तरीके से भंडारण करने से पहले अच्छी तरीके से उसका साफ सफाई करेंगे। उसमें मैलाथियन दवा आता है, उसको घोल बना के चारों तरफ उसको लगा दीजिए और उसको पैक कर दीजिए 10 से 15 दिन के लिए। उसके बाद उसको खोलिए, उसमें आप जो अनाज है उसको आप भंडारित करिए, उसके बाद ऊपर से आप फिर से पैक कर दीजिए।
0: अच्छा
1: जी,
0: उसको पैक को खोलना नहीं है?
1: नहीं, उसको खोलना नहीं है। उसमें अगर एयरनेस आएगा, हवा आएगा तो उसमें रोग आना चालू हो जाएगा।
0: अगर खोल रहे हैं तो उसको अविलंब बंद कर
1: दें। जी जी
0: जी, उपयोग करने के बाद आप बंद कर
1: जी जी उपयोग करिए, तुरंत बंद कर दीजिए।
0: ये तो ऐसे हुआ, साबुत अनाज की बातें हो गई। दलहन वगैरह को कैसे हम करेंगे?
1: देखिए, दलहन में भी सेम प्रक्रिया अपनाते हैं। दलहन में आप अभी जैसे चना है, मसूर है, ये अभी आप भंडारित करने का समय हो रहा है क्योंकि ये सब हार्वेस्ट होने लगा है, तो ये सब का भी सेम उसी तरीके से भंडारण करेंगे। बस हाँ, इसमें ये ध्यान देना है कि अगर आप, क्योंकि दलहन का किसान अगले वर्ष लगाने में भी फसल बीज के रूप में भी करता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए। और इसमें जो क्या बोलते हैं, सल्फास का गोली है, इसका आप लगभग 40 से 50 केजी पे एक पुड़िया पर्याप्त मात्रा में है सल्फास का गोली। अगर मैलाथियन कर रहे हैं तो 100 ग्राम पर लीटर में घोल के चारों तरफ उसका छिड़काव करिए। अब बोरी, जैसे कि अगर आप कोठी बोल रहे हैं, गोदाम जो उसमें बोल रहे हैं, अगर मिट्टी का जैसे है तो उसमें अगर रख रहा है तो उसमें रख के पैक कर दें। अगर पक्का फर्श यूज कर रहा है तो उसको रखने के बाद उसको चारों तरफ से बंद कर दें, खिड़की दरवाजा जो भी है अच्छी तरीके से उसको लॉक कर दें। अगर ये दोनों चीज अवेलेबल नहीं है तो प्लास्टिक ले लें, प्लास्टिक में रख के अच्छे से चारों तरफ पैक कर दें। अब मिट्टी से उसको अच्छे तरीके से लेप लगा देगा तो जिसमें हवा आएगा नहीं, ना जाएगा, तो वो
0: कुछ
1: साबुत बचा रहेगा।
0: और ये जैसे भंडारित में हम लोग ने बातें कर ली अनाज फसल की, दलहन की बातें कर ली हम लोग, और सब्जियां में कुछ वैसे नुस्खे?
1: सब्जियां में एक्चुअली में होता क्या है कि उसका भंडारण जो होता है कि सब्जियां एज कोल्ड स्टोरेज में अधिकतर सब्जियां होती हैं, और बाकी सब्जियों का सीड एक्चुअली में अधिकतर हाइब्रिड में आता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसका दिक्कत है। जबकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे कि लौकी हुआ या झींगी हुआ, इस सब का भंडारण करते हैं, तो इस सब को एज, जैसे कि लौकी हुआ या तो झींगी हुआ, इसका एज जो इसका फल है टोटली पूरी तरीके से हार्ड हो जाए, येलो हो जाए, उसको भंडार, उसको तोड़ के कहीं पे सुरक्षित स्थान पर रख दें, या तो जैसे कि पुआल का घर है या मिट्टी का घर है, खपरेल का घर है, तो उसमें कहीं कोने में टांग दें, वो ज्यादा बेटर है। जी,
0: आप थे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियागी के कृषि विशेषज्ञ अभिषेक पटेल जी। आप कार्यक्रम से जुड़े और अनाज भंडारण संबंधी जानकारी हमारे ग्रामीण भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुना अभिषेक पटेल जो कि

कृषि विशेषज्ञ हैं, उनसे ली गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता विषय था अनाज भंडारण की उन्नत तकनीक और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और चलिए अब हम फिर से एक बार आनंद लेते हैं लोकगीत का शारदा सिन्हा की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ ग्रामीण सभा कार्यक्रम से अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: देखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: क्या बात है, फिट लग रहा है।
2: 3 महीने में पैसे डबल,
3: वाह,
4: फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
2: क्या स्कीम है, कल तो नहीं थी यहाँ
5: और कल होगा भी नहीं।
2: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
6: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
2: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
5: और फास्ट रिटर्न से बच के
2: और फास्ट बॉलिंग से भी।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया जी रामजी मिशन। 1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार। राज्यपाल ने सस्टेनेबल माइनिंग पर दिया जोर। वैज्ञानिकों से तकनीक को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का किया आह्वान। रामगढ़ के पतरातू में राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर्स मीट का आयोजन। पर्यटन मंत्री ने कहा, डिजिटल माध्यमों से देश दुनिया में बढ़ेगी झारखंड की पहचान। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ कर्मशाला शुरू। कम बारिश के अनुमान के बीच वैज्ञानिकों ने किसानों को दी खास सलाह। और अगले कुछ घंटों में रांची समेत कई जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी मिशन को अधिसूचित कर दिया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। इस नए अधिनियम के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान कोल प्रबंधन IICM में सतत खनन और पारिस्थितिकी बहाली पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ जिम्मेदार खनन की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पोखरण परमाणु परीक्षण और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी याद किया। नक्सल मुक्त होने के बाद अब गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ विकास की राह पर है। राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 14 मई को इस क्षेत्र का दौरा करेंगी। वे बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट योजना की समीक्षा और नई परियोजनाओं को लागू करने के लिए बैठक करेंगी। प्रशासन इस महत्वपूर्ण दौरे की तैयारियों में जुट गया है।
2: बूढ़ा पहाड़ को लेकर आज उसकी विकास परियोजना की बैठक करी गई और गांववार हम लोगों ने सभी के लाभार्थी बढ़ाने का निर्देश दिया। पानी का भी कार्य किया गया है। कुछ अपर एरियाज है जहां पर ट्रैक्टर पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, उस संबंध में भी हम लोगों ने सभी स्टेक होल्डर्स को कोऑर्डिनेट करते हुए जल्द से जल्द

0: निपटाने का निर्देश दिया।
1: रामगढ़ के पतरातू लेक रिसोर्ट में आज झारखंड टूरिज्म स्टेट लेवल इन्फ्लुएंसर्स मीट 2026 का आयोजन हुआ। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार डिजिटल माध्यम से झारखंड पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।
2: 2019 से लेकर 2026 तक में पतरातू में टूरिस्ट का फुटफॉल 3 गुना बढ़ चुका है। सरकार की नीतियां, प्रचार और प्रसार में पतरातू को झारखंड के हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया है। बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें और भी दिखेंगी।
1: राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने रांची के करमटोली में 5 करोड़ की लागत वाले धुमकुड़िया भवन समेत 4 भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन भवनों के निर्माण से जनजातीय संस्कृति संरक्षित होगी और आदिवासी बच्चों को शिक्षा तथा कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे। जामताड़ा में आज आदिवासी पारंपरिक वाद्य यंत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जिले के कला केंद्रों और धुमकुड़िया भवनों के लिए ढोल, नगाड़ा और मांदर जैसे वाद्य यंत्रों का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने तथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के वर्तमान घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयीय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील को दोहराया।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक देशभक्ति की अपील का गिरिडीह में व्यापक स्वागत हुआ। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी सहित स्थानीय व्यवसायियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और 1 साल तक सोना न खरीदने का आग्रह किया है।
4: विदेश मुद्रा का संकट तेल के और सोना के कारण जो आया हुआ है, उस परिस्थिति में मोदी जी के आह्वान किया है कि हमें विदेशी यात्रा और सोना खरीदना, उस तरीके की चीजें करना जो विदेश मुद्रा को कम करती है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं
1: रांची के कोकर से 18 माह की बच्ची के लापता होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस प्रशासन को बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।
5: झारखंड राज्य में पुलिसिया तंत्र बिल्कुल खत्म है। एक निहायत गरीब परिवार का बच्चा 18 महीने जिसकी आयु हो, बहुत बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की साहस कैसे हो गए। आज खुलेआम तौर पर माइक ऑन करके प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 36 घंटे के अंदर उस नाबालिग बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करने का काम करें।
1: जमशेदपुर के एग्रीको में टाटा स्टील के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी रविंद्र सिंह रात भर शवों के साथ घर में रहा और सुबह खुद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज से दो दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला शुरू हुई। मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष 30% कम बारिश के अनुमान को देखते हुए वैज्ञानिकों ने किसानों को कम सिंचाई वाली फसलें उगाने की सलाह दी है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान विभाग के निदेशक पीके सिंह समेत अन्य

0: विशेषज्ञों ने किसानों से अपील की है कि वे समय से पूर्व गहरी जुताई करें ताकि अल्पवृष्टि में भी बेहतर पैदावार हो सके।
1: हम लोग किसान भाई को सलाह देना चाहते हैं कि 120 दिन के वैरायटी पे जाएं, अगर निचले जमीन में है ज्यादा दिन मॉइस्चर रहता है तो 140 दिन के वैरायटी के जाएं, और खास करके जो ऊपरी जमीन में

0: और मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित कई जिलों में अगले 24 घंटों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका व्यक्त की है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। पिछले 24 घंटों में रांची में सबसे अधिक 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 16 मई तक मौसम का मिजाज बदले रहने की संभावना जताई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया जी रामजी मिशन। 1 जुलाई से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार। राज्यपाल ने सस्टेनेबल माइनिंग पर दिया जोर। वैज्ञानिकों से तकनीक को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का किया आह्वान। रामगढ़ के पतरातू में राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर्स मीट का आयोजन। पर्यटन मंत्री ने कहा, डिजिटल माध्यमों से देश दुनिया में बढ़ेगी झारखंड की पहचान। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ कर्मशाला शुरू। कम बारिश के अनुमान के बीच वैज्ञानिकों ने किसानों को दी खास सलाह। और अगले कुछ घंटों में रांची समेत कई जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है,
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
6: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
5: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
6: तो फिर सही नंबर,
5: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
6: आपने तो बचा लिया दीदी।
5: काम से नहीं।
7: RBI कहता है,
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रचंड जीत और नई सरकार के गठन पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। कोडरमा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडाराज का अंत हो गया है और भाजपा सरकार के गठन के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है।
2: इस तरह से टीएमसी के गुंडा राज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर लगातार उन पर हमला करते रहे, बहुत प्रताड़ित किया, उसके बावजूद पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल डटे रहे। वो लगातार चाहे पंचायत चुनाव रहा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चुनाव के बाद हमेशा हिंसा होता रहा। टीएमसी के लोग थे, उनके द्वारा गुंडागर्दी कर लोगों को परेशान करते रहे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के कार्यकर्ता पेशेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता डटे रहे। वो इस इंतजार में कि सरकार हमारी बनेगी।
1: जनगणना 2027 को लेकर कोडरमा जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 15 मई तक ऑनलाइन स्वगणना का कार्य किया जा सकता है, जबकि 16 मई से भौतिक रूप से प्रगणक मकान सूचीकरण और गणना कार्य को अंजाम देंगे। इसे लेकर जिले में 9 चार्ज बनाए गए हैं और 270 पर्यवेक्षकों के अलावे 1539 प्रगणकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने आम लोगों से भी जनगणना की वेबसाइट पर जाकर स्वगणना करने की अपील की है।
3: तीन एवं शहरी क्षेत्र मिलाकर कुल 9 चार्ज बनाए गए हैं, जिसमें अधिकारी संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के लिए वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी अधिसूचित हैं। इसमें से जनगणना 2000

0: 2027 के माध्यम में 34 क्वेश्चन है, जिसमें से 30 प्रश्नों का जो भी गणना करेंगे उनको आपके माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से 30 सवाल भरने पड़ेंगे। 1 मई से 15 मई तक हम लोग का जो फेज वन का पहला चरण चलेगा उसमें वो लोग उस गणना कर सकते हैं। जो नहीं ऑनलाइन करेंगे उसमें हमारे प्रज्ञक घर घर जाके जो 34 सवाल है उनको पूछेंगे और उनका जानकारी भरेंगे। मेरी सभी से ये अपील है कि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन भरें।
1: गर्मी के शुरुआत के साथ ही कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। खासकर जंगली इलाकों में निवास करने वाले आदिवासी और आदिम जनजाति परिवारों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गजहंडी और बेंदी के जंगली इलाकों के अलावे मरकच्चो प्रखंड के डगरनवा पंचायत के कारी पहाड़ी और ललकी माटी टोला में निवास करने वाले आदिवासी परिवार चूहा खोद कर पानी पीने को विवश है।
2: हम लोग का है पानी के लिए सुविधा नहीं है सर, प्लस में हम लोग का लाइट के लिए बिजली नहीं है। बहुत दूर से 1 किलोमीटर से पानी लाते हैं, माथा से चूहा खड़ करके माथा से धो करके। गर्मी बहुत शराब कर, अभी तो ताजा पानी काल परसों गिरा हुआ है इसलिए हम लोग को थोड़ा राहत मिला है, नहीं तो हम लोग इतना मजबूर हैं जो कि पानी पीने के लिए बहुत परेशान है।
3: क्या चाहते हैं सरकार से?
2: सरकार से चाहते हैं ये हम लोग को पानी चाहिए।
1: इन इलाकों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को पानी लाने के लिए भी अपने घर से 1 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
4: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र से। जिले में आजकल प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। 103 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर होंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

बुनियाद। नमस्कार, कैसे हैं? बुनियाद कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आ गया आप सबों के घर आंगन में। अभी तक फोन कॉल आ रहे हैं, हमने बातें ही ऐसी की थी कि फोन कॉल लगातार आ रहे हैं। बीएड की बातें की थी और बीएड इंटीग्रेटेड स्पेशल बीएड की बातें की थी, जो 4 साल का कोर्स होता है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। आज उसके अगले हिस्से को हम लेकर आए हैं। ढेर सारे सवाल आए हैं, जिसमें एक सवाल ये कॉमन है कि बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके बारे में फिर से एक बार बता दिया जाए। जरूर बताएंगे, ये कार्यक्रम है आपके लिए, हम तो सिर्फ एक माध्यम है जानकारियां पहुंचाने के लिए। थैंक यू कहते हैं गोपाल।

0: नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार को कि जिन्होंने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके फोन कॉल्स आते हैं और उससे भी अच्छा लगता है जब आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में आते हैं देखने के लिए। एक आध बार मुलाकात हो गई है कुछ लोगों से हमारी भी, बोला आप ही राजेश जी हैं। हमने कहा जी अच्छा लगता है सर, थैंक यू। तो अब थैंक यू, आभार, अभिनंदन आपका करना चाहते हैं कि आप हम पर इतना विश्वास करते हैं। बहरहाल टेक्निकल पढ़ाई की बातें हम लगातार कर रहे हैं कि टेक्निकल पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपने पैरामेडिकल की पढ़ाई की तो पैरामेडिकल के अंदर में टेक्नीशियन हो सकते हैं, ओटी असिस्टेंट हो सकते हैं, आप रेडियोलॉजी में जा सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, आप नर्सिंग में जा सकते हैं, एएनएम और जीएनएम बन सकते हैं, आप फार्मेसी में बी फार्मा, डी फार्मा या फार्म डी कर सकते हैं, या जर्नलिज्म में जा सकते हैं, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कर सकते हैं, बीबीए मैनेजमेंट के साथ लॉ, बीए के साथ लॉ, बीएससी के साथ लॉ। अगर आप 3 साल वाला भी लॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो जर्नलिज्म कर सकते हैं। लाइब्रेरी में, किताबों से आपको बहुत प्यार है तो किताब के रख रखाव के लिए एक पढ़ाई होती है लाइब्रेरी साइंस, आप उसमें जा सकते हैं। ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बार फिर से डॉक्टर अवनीश रंजन से, जो पुनर्वास विभाग में डीन हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, और हम स्पेशल की बात करते हैं, चैलेंज की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नंबर बताए देते हैं, नंबर नोट कर लें। नंबर है 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121005, 1800121005। और दूसरे कोर्स के बारे में भी, या यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल के बारे में अगर आप जानकारियां चाहते हैं तो www.gnsu.ac.in ये वेबसाइट का पता है, आप यहां जा सकते हैं। बहरहाल हाँ, एक जानकारी और ये है कि अगर पैसे की समस्या है ना, तो 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जो बिहार सरकार देती है, इससे भी बहुत सारे कोर्स किए जा सकते हैं। आप पता लगाइए और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आ जाइए, या ये जो नंबर है 9431899002 या 1800121005 पर पूछ लीजिए। बहरहाल डॉक्टर अवनीश रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़े में।
1: मैं डॉक्टर अवनीश रंजन, और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के डीन के पोस्ट पे हूँ। और हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 कोर्सेज अभी संचालित हो रहे हैं इस फैकल्टी से, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन। बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन हैं, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता और हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता, ये 2 में हमारे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स 4 साल वाले चल रहे हैं।
0: चलिए, एक सवाल जो आपने पिछले सप्ताह बताया था उसमें एक बार फिर से ये बताने की बात कही गई है कि जो प्लेन बीएड 2 साल का ग्रेजुएशन के बाद होता था, और जो इंटीग्रेटेड बीएड है जो इंटर के बाद 4 साल का होता है, और जो स्पेशल शब्द जुड़ा है जिसमें, उसके बारे में एक बार फिर से बता दीजिए, फिर बातों को हम आगे बढ़ाएं।
1: बीएड का ये मतलब है कि बच्चे तभी एडमिशन लेते हैं जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब 3 साल के कोर्सेज हैं, कई बार यूनिवर्सिटी लेट होने के कारण, एग्जामिनेशन लेट होने के कारण 4 साल 5 साल भी लड़कों को लगते हैं। उसके बाद फिर 2 साल का बीएड करना होता है और तब आप टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं बीएड करने के बाद। लेकिन ये जो नया बीएड आया है इंटीग्रेटेड बीएड, जिसको इजी टेप बोलते हैं, कई लोग आप जानते होंगे, एनसीटी जो नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल है उनके द्वारा भी आईटेप चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो भी इंटीग्रेटेड बीएड ही है, वो 4 साल का वो भी है। वहां पे जनरल बीएड की पढ़ाई होती है और हमारे यहाँ स्पेशल बीएड की पढ़ाई होती है। अब स्पेशल ये है कि अभी जो कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने या आईसीएसई बोर्ड ने या स्टेट बोर्ड ने ये कंपलसरी किया है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेशन के टीचर को की अपॉइंटमेंट जरूरी है, ये कंपलसरी हो गया है। और आप देखे होंगे पिछले 6 महीने के अंदर में सेंट्रल स्कूल जो है हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार और नवोदय विद्यालय संगठन भारत सरकार, इसके द्वारा देश के स्तर में वैकेंसी निकाली गई, हर

0: मध्य विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने, और खासकर बिहार की बात हम करें तो बिहार ने बीपीएससी, जो बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन है, वहां से भी वैकेंसी टीचर की आई और 29 जनवरी को ही करीब 7,500 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, जिसका रिटन टेस्ट हुआ है और उसके बाद वो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के रूप में वो अपॉइंट हो जाएंगे। तो वो जो डिग्री है जिसके बेस पर वो बीपीएससी की परीक्षा देंगे या सेंट्रल स्कूल या नवोदय विद्यालय में ज्वाइन करेंगे, वो यही इंटीग्रेटेड बीएड है या यही बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। डॉक्टर अविनीश से हम कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अविनीश, आप ये पढ़ाई करके चाहे जहां के रहने वाले हों, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा या फिर और भी गोड्डा के रहने वाले हों, या फिर आप डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, कहीं भी आप ये पढ़ाई करके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, समाज की भलाई भी कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा?
0: मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है वो एक रूरल एरिया में हमारा यूनिवर्सिटी है और ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर भी हम लोग कैंपस के अंदर में इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर हमारे यहाँ चलते हैं, जो इस तरह के बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी थेरेपी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हम लोगों ने डेवलप किया है। और आप जैसे लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, करने के बाद आप सक्षम ऐसे होंगे कि आप ऐसा सेंटर अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में खोल पाएंगे। आप उनको तो सर्विस देंगे ही, एक बहुत ही नोबल सर्विस है, वो तो आप देंगे ही, साथ साथ आप एक अच्छी अर्न भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे जो आज बॉम्बे में जाके, दिल्ली में जाके, बड़े शहर में जाके इलाज करा के लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो तो बच्चों का क्या होगा कि अपने पेरेंट्स के साथ भी रह पाएंगे और आपके यहाँ थेरेपी होगी तो आपका भी एक अच्छे से धनोपार्जन होगा और आप एक सोशल सर्विस के साथ साथ अपनी जीवन को का भी आपन भी अच्छे से कर पाएंगे।
1: एक बात और बताइए, हाँ, कि ये जो कोर्स है ना इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन का, ये सिर्फ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में हो रहा है या बिहार के और भी किसी हिस्से में हो रहा है, विश्वविद्यालय में हो रहा है, इसकी भी जानकारी भी हमें दे दीजिए, युवा साथियों को होनी चाहिए।
0: वर्तमान में झारखंड और बिहार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी ही है जहां पे ये पिछले साल से ये कोर्स शुरू किया गया है और भारतीय पुनर्वास परिषद ने इन्हें दो कोर्स, इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के दो कोर्सेज के लिए मान्यता दी है और अगले 5 साल तक के लिए ये मान्यता है। और यूपी में एक आध जगह कहीं शुरू हुआ है, वो भी बहुत ही छोटे स्तर पे भी अभी है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपके ही राज्य में एक बड़ा एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप चाहें तो इसमें एडमिशन लें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।
1: अच्छा, एक बात बताइए, इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल में बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज, हाँ, ये सारे उपलब्ध हैं, इसका मतलब क्या है?
0: ये ऐसा कोर्स है जिसमें कि आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगी, मतलब कि आप ग्रेजुएशन भी आपका होगा, मतलब अगर आप बीए करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। साथ साथ इसी ड्यूरेशन में, मतलब 4 साल के ही अंदर में, आप बीएड स्पेशल एजुकेशन के भी पढ़ाई को करके उसकी भी डिग्री ले पाएंगे। मतलब ये ड्यूअल डिग्री है, आप दो कोर्स एक साथ कर रहे हैं और एक ही पीरियड में आपको दो तरह की डिग्री मिल जाएगी।
1: अच्छा, चलिए, आपके यहाँ, जैसा कि आपने इस सवाल के पहले जवाब दिया कि संभवतः ये सिर्फ आपके यहाँ ही शुरू किया गया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, तो अपने बारे में बताइए कि क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, हाँ, क्या एक नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है कि नहीं है?
0: इस कोर्स को शुरू करने से पहले भारतीय पुनर्वास परिषद में हम लोगों ने जब अप्लाई किया था एफिलिएशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, तो एक उनका एक अपना नॉर्म्स है कि कितने टीचर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासरूम कैसे हो, लाइब्रेरी कैसे हो, आप हम लोगों के साथ एक स्कूल अटैच हो जहां पे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को हम लोग भेज सकें, तो ये सब कुछ के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही हम लोगों ने अप्लाई किया था। वहां से हम लोगों के टीम एक आई, इंस्पेक्शन हुई, एक प्रोफेशनल्स की टीम आई थी, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के बाद हम लोगों को ये रिकॉग्निशन मिला कि आप इस कोर्स को चला सकते हैं। और ये चूंकि हमारा कैंपस करीब 100 एकड़ में है और इसमें और भी कई दूसरे कोर्सेज भी हमारे यहाँ चलते हैं। तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हमारे यहाँ टीचिंग की क्वालिटी को लेके

0: हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेके ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा माहौल है, जिसके का रिकॉग्निशन हमारी कई जो सेंट्रल जो काउंसिल्स हैं उन्होंने दिया है अलग अलग कोर्सेज के लिए। उसी तरीके से भारतीय पुनर्वास परिषद ने के मानक पे हम लोग खड़े उतरे हैं, जिसके कारण हमको ये मान्यता मिली है।
1: बहुत खूब। हाँ, डॉक्टर अवनीश रंजन, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और क्या कहना चाहते हैं चलते चलते लोगों से,
0: युवाओं से? अपील है हमारी कि आप ये इस कोर्स को एक बार समझिए, एक बार देखिए, एडमिशन लीजिए। आप अगर आप ग्रेजुएशन आपका अगर प्लान है कि आगे जाके आपको टीचर बनना है या आगे आपको जाके ऐसे काम को करने हैं जिसमें कि आपकी अच्छी अर्निंग भी हो, आप सोशल सर्विस भी कर पाएं और आपका रिकॉग्निशन सोसाइटी भी अच्छा बने, तो आप तीनों आप अगर इस कोर्स को करेंगे तो तीनों आपके जो नीड है या आपके तीनों जो आपके जो ख्वाब हैं वो जरूर पूरे होंगे। क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि 4 साल के अंदर में आप जब पढ़ के निकलेंगे तो नौकरी आपके दरवाजे खड़ी होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी इसमें है और लोग कम है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ कि अभी जो जस्ट 29 जनवरी को परीक्षा हुई है बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, तो 7,500 सीट थे और करीब करीब 6,500 से 7,000 ही कैंडिडेट अपीयर हुए उसमें। तो आप ये अंदाज लगाइए कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो अगर जो लोग जितनी जल्दी इस फील्ड में आएंगे उनका नौकरी उतना ज़्यादा श्योर है, क्योंकि अभी सारी जगह वैकेंसीज हैं, सब जगह खाली सीट है, तो आप आएंगे तो आपको एक अच्छा चांस मिलेगा।
1: थैंक यू डॉक्टर अवनीश रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, एकदम नया कोर्स है, सीट भी कम है, हाँ बहुत ज्यादा सीट नहीं है, इशारा समझिए। अगर जो आप चाहते हैं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 साल का, वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है और संभवतः अपने बिहार झारखंड में पहली दफा ये कोर्स आया है बहुत ही लिमिटेड सीट के साथ, आप चाहे तो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर है 1800121051, और एक वेबसाइट का पता भी है www.gnsu.ac.in। इसमें जितने तरीके के 13-14 तरीके के टेक्निकल पढ़ाई कराए जाते हैं सारी की जानकारियां आपको मिलेंगी। फिलहाल थैंक यू कहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार को कि उन्होंने ये कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बुनियाद प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, 103 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर होंगे स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कल्याणी भेंटवार्ता में आप सुनेंगे हम भूलने क्यों लगे। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर सुरजीत प्रसाद रांची, भेंट करते हैं संजीव कुमार लाल।

0: मित्रों, जब उम्र बढ़ती है तो याद रखने की क्षमता पर असर होने लगता है। बढ़ती उम्र में तन और मन दोनों स्तर पर बदलाव शुरू हो जाता है। कुछ नया करने या सीखने या याद रखने में अधिक समय हमें लग जाता है या हम याद नहीं कर पाते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतों को भूलने लग जाते हैं, जैसे हमने अपना चश्मा कहाँ रख दिया, चाबी कहीं और रख दिया, कागजात कहीं रखकर हम भूल गए और फिर उसे खोजने लग जाते हैं। यानी चीजें रखकर भूल जाने या उन्हें खो देने की घटनाएं अक्सर बढ़ने लग जाती है। देखा जाए तो ये लक्षण उम्र बढ़ने पर बुजुर्गों में ज्यादा होती थी, परंतु अब कम उम्र के युवा में भी भूलने के लक्षण तेजी से दिखलाई पड़ने लगे हैं। जब याददाश्त कमजोर होने लगती है तो रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल भरी हो जाती है। तो हम भूलने क्यों लग जा रहे हैं, क्या कारण है? एक समय था कि हमारे बुजुर्ग साथी भूलने लग जा रहे थे, आजकल कम उम्र के हमारे साथी भी भूलने के शिकार हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो जा रहा है? हमारी जीवन शैली कितनी हद तक जिम्मेदार है? हमारा रहन सहन और हमारा खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल इसको किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान के सब प्राध्यापक डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल भूलने की प्रवृत्ति लोगों में क्यों बढ़ते जा रही है?
1: आजकल भूलने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, इसका मुख्य कारण अगर हम कहें तो हमारी जीवन शैली ही कहेंगे। ओल्ड एज में पहले भी लोगों में ये भूलने की प्रवृत्ति होती थी, जिसे हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। उसमें भूलने के साथ साथ उनके अदर फंक्शन जो है, जैसे स्पीच में प्रॉब्लम होगा या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो दिनचर्या के कार्य है उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, किसी कार्य को करने में उनको कठिनाई होने लगती है, तो इसको हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। ये कॉमन है, 60 साल की उम्र के ऊपर के लोगों में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे एजिंग होती है वैसे वैसे हमारे ब्रेन सेल्स के लॉस होने लगते हैं, और एक बार जो ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं वो वापस रीजनरेट नहीं कर पाते पूरी तरह, क्योंकि सेल्स कम होते जाते हैं। तो सेल्स कम है इसलिए हमें समझने के लिए कि भूलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है भूलने की शिकायत। यंग एज में जो भूलने की शिकायत है उसका मुख्य कारण एक तो भागदौड़ की जिंदगी हो गई है, और कहीं ना कहीं वो साथ उनको बहुत सारे कार्य उन्हें करना रहता है, तो उनमें बहुत सारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं और उसी दौरान वो कार्य भी करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो कार्य वो कर रहे हैं उसे एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं। एकाग्रता की कमी के कारण वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर नहीं हो पाता है, प्रोसेस नहीं हो पाता, जिसके कारण कि वो फिट हो सके, हमारे ब्रेन में किसी कोने में याद के रूप में वो संग्रहित हो सके। तो बाद में जब हम लोग रिकॉल करते कि अरे ये काम तो मैंने किया था लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो मुख्य कारण वही है कि वो एकाग्रता से उन्होंने नहीं किया था, उनके दिमाग में उस तरह तरह तरह की बातें चल रही थी और काम कुछ और कर रहे थे, तो वो बाद में उन्हें लगता है कि अरे मैं तो ये भूल जा रहा हूं, मुझे भूलने की शिकायत हो रही है। लेकिन यंग एज में जनरली जो डिमेंशिया जो कहते हैं वो बहुत ही अनकॉमन है, यूजुअली ये 60 के ऊपर होते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिसमें 40-45 साल में भी वो हो सकते हैं, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया एक प्रकार का डिमेंशिया है, उसमें ये चीजें पाई जा सकती है। उसके साथ साथ कुछ कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर उनको हो रहे हैं तो उसके साथ ये चीजें होती है। लेकिन अगर उन्हें इस तरह की कोई बीमारी नहीं है और सिर्फ भूलने की शिकायत हो रही है यंग एज में, तो मेनली उसमें एकाग्रता की कमी वो एक मुख्य कारण हो सकता है, और साथ ही साथ अवसाद या डिप्रेशन या एंग्जाइटी भी आप कह सकते हैं। उस कंडीशन में भी हम जो कार्य करते हैं उसे याद नहीं रख पाते, हमारा ब्रेन उसको रजिस्टर नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्रेन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं जिसके कारण उन्हें लगता है कि वो भूल गए हैं। इसे हम लोग मेडिकल टर्म में स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं कि फॉल्स डिमेंशिया, ये डिमेंशिया है नहीं एक्चुअली, ये फॉल्स है। तो ये कारण अभी जो है वो हो सकता है।
0: कभी कभी हमारे बुजुर्ग साथियों में ये होता है कि वो पुरानी चीजें तो याद रखते हैं लेकिन वर्तमान की चीजें, कोई उनसे मिल कर गया, उन्होंने क्या खाना खाया, वो भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?
1: यस सर, ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। इसे ही ये डिमेंशिया का प्राइमरी लक्षण है, जो रिसेंट इवेंट्स हैं उन्हें उसी में उनकी याददाश्त

0: कमी रहती है, क्योंकि सेल्स जो हैं, जैसे हमें, हम कोई बात कैसे याद रखते हैं, हमें वो बात हमने सुनी, उसे ब्रेन में प्रोसेस किया और ब्रेन में कुछ कुछ वायरिंग सिनेप्स हम लोग बोलते हैं वो बन जाते हैं, जिसके कारण वो स्टोर रहता है माइंड में। अब चूंकि ओल्ड एज हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स कम गए हैं, तो ये फंक्शन तो अब कम जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि वो जब वो रिसेंट जो काम कर रहे हैं, एकाग्रता से भी अगर कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रेन सेल्स कम है इसलिए वो सिनेप्स नहीं बन पा रहे हैं, सिनेप्स नहीं बन रहे हैं, वो स्टोर नहीं हो पा रहा है ब्रेन में, तो अगली बार जब वो करते हैं तो उन्हें वो याद नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन में वो स्टोर है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। क्यों नहीं स्टोर है? ड्यू टू लेस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो ब्रेन में है वो कम हो गए हैं इसके कारण से, तो इसलिए वो भूल जाते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है डिमेंशिया का, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से अधिक है और उन्हें रीसेंट चीजें याद नहीं रहती है, तो उन्हें तुरंत किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मिलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस प्रकार किया जाता है? यदि किसी को भूलने की आदत हो गई, वो भूल जा रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन उनकी याददाश्त कमती जाएगी, या उसको रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, या इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है?
0: जनरली अभी तक जो कॉमन डिमेंशिया जो पाए जाते हैं उनका उपचार, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उसे रिवर्स बैक तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्राइमरी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट इलाज से, जैसे दवाओं के इलाज से और काउंसलिंग से, उसकी जो गति है उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं। जो अगर बिना इलाज से वो 2 साल 3 साल में जितना ज्यादा खराब होंगे, अगर हमने सही समय पे इलाज शुरू कर दिया तो उसे हम लोग 10 साल 12 साल तक 15 साल तक खींच सकते हैं। तो जो गति है प्रोग्रेशन की उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं दवाओं के द्वारा, काउंसलिंग सर्विसेज से, थेरेपी कहते हैं उसके द्वारा, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा ये चीजें हम लोग कर सकते हैं।
1: जी, कितना जिम्मेदार है डॉक्टर साहब हमारी जीवन शैली आज की? खान पान हमने अपने आप को बिगाड़ लिया है, हमारे रहने खाने पीने का समय निर्धारित नहीं है जी। तो कैसे हम अपने आप को व्यवस्थित करें ताकि हमारी याददाश्त बहुत मजबूत रहे?
0: याददाश्त के लिए हमारी जीवन शैली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं ये जो बीमारी है, पहले इस उम्र 60 की उम्र में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थी, लेकिन आजकल ये बहुत ही कॉमन होती जा रही है, बहुत ज्यादा मरीज इस उम्र के हमें मिल रहे हैं। इसका एक कहीं ना कहीं प्रमुख कारण हमारी जीवन शैली है। जीवन शैली में हम लोगों ने एक जंक फूड का एक बहुत ही प्रचलन है तो उसको अपना लिया है, पौष्टिक आहार से हम लोग दूर जा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, और बहुत बार लोगों में पाया गया है कि वो नशे का सेवन करने लगते हैं अगर कुछ समस्या होती है, कुछ टेंशन होती है, तो नशे का सेवन, स्मोकिंग जो कॉमन है आजकल, स्मोकिंग वो सब अगर करेंगे तो आप में जो इस तरह की डिमेंशिया के लक्षण है वो अर्ली आ सकते हैं। साथ साथ हमें 40-45 के ऊपर फिर कुछ कुछ बीमारियां बहुत कॉमन हो गई आजकल, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अगर उसका हम लोग सही समय पे सही इलाज स्टार्ट कर दें तो भी ये चीजें हमें डिमेंशिया को कम करने में या उसे प्रोग्रेशन को धीमे करने में बहुत मदद करती है। तो जीवन शैली के साथ साथ नशे का सेवन ना करें, और अगर कुछ बीमारी है, शारीरिक बीमारी आपको हो रही है, तो उसका उचित और संपूर्ण इलाज कराएं, तो हम लोग इस डिमेंशिया का जो प्रोसेस है इसको हम लोग डिले कर सकते हैं, और कुछ कुछ केसेस में इसे बहुत डिले भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं।
1: डिमेंशिया और टेंशन ज्यादा है तो डिमेंशिया का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा।
0: एक्चुअली थोड़ा सा ये है कि टेंशन, अगर यंग एज से बहुत अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, तो कहीं ना कहीं टेंशन हमारे ब्रेन सेल्स को तो हैम्पर करेगा ही, उसे डैमेज करेगा ही, तो रिस्क तो बढ़ जाता है। अगर जो अवसाद से लगातार ग्रसित है तो उनमें आगे के एज में, मतलब पोस्ट 60, डिमेंशिया होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अवसाद है, डिप्रेशन है, ये हमारे सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो ब्रेन में है उसको कम करता ही है। तो एक तो वो है, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन या टेंशन में लोग क्योंकि एकाग्र नहीं हो पाते इसलिए वो चीजें भूल जाते हैं, जिसे मैंने टर्म बताया कि सुडो डिमेंशिया कहते हैं, तो वो एक चीज तो होती है।
1: तो एकाग्र मन से यदि हम काम करते हैं और एक साथ बहुत चीजें हम करने लग जाते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और फिर चीजों को हम भूल जा रहे हैं, तो एक समय में एक कार्य किया जाए।
0: कुछ लोगों में होती है ये प्रतिभा कि वो मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीटास्किंग नहीं अगर कर पाते हैं, तो उन्हें एकाग्रता से ही काम करना चाहिए ताकि उनको चीजें याद रहेगी, ये चीजें उनको मतलब अगर बाद में रिकॉल करना है तो याद रह सकती है। मल्टीटास्किंग कुछ लोग कर पाते हैं, ये उनकी एबिलिटी होती है, लेकिन सारे लोगों में ये एबिलिटी नहीं होती है। और मन को कहीं ना कहीं चित्त को प्रसन्न रखना होगा, शांत

0: डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
1: तो मित्रों अपना
0: कह सकते हैं क्योंकि ये प्राइमरी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट इलाज से, जैसे दवाओं के इलाज से और काउंसलिंग से, उसकी जो गति है उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं। जो अगर बिना इलाज से वो 2 साल 3 साल में जितना ज्यादा खराब होंगे, अगर हमने सही समय पे इलाज शुरू कर दिया तो उसे हम लोग 10 साल 12 साल तक 15 साल तक खींच सकते हैं। तो जो गति है प्रोग्रेशन की उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं दवाओं के द्वारा, काउंसलिंग सर्विसेज है, थेरेपी कहते हैं उसके द्वारा, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा ये चीजें हम लोग कर सकते हैं।
1: जी, कितना जिम्मेदार है डॉक्टर साहब हमारी जीवन शैली आज की? खान पान हमने अपने आप को बिगाड़ लिया है, हमारे रहने खाने पीने का समय निर्धारित नहीं है
0: जी।
1: तो कैसे हम अपने आप को व्यवस्थित करें ताकि हमारी याददाश्त बहुत मजबूत रहे?
0: याददाश्त के लिए हमारी जीवन शैली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं ये जो बीमारी है, पहले इस उम्र 60 की उम्र में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थी, लेकिन आजकल ये बहुत ही कॉमन होती जा रही है, बहुत ज्यादा मरीज इस उम्र के हमें मिल रहे हैं। इसका एक कहीं ना कहीं प्रमुख कारण हमारी जीवन शैली है। जीवन शैली में हम लोगों ने एक जंक फूड का एक बहुत ही प्रचलन है तो उसको अपना लिया है, पौष्टिक आहार से हम लोग दूर जा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, और बहुत बार लोगों में पाया गया है कि वो नशे का सेवन करने लगते हैं, अगर कुछ समस्या होती है, कुछ टेंशन होती है तो नशे का सेवन, स्मोकिंग जो कॉमन है आजकल, स्मोकिंग वो सब अगर करेंगे तो आप में जो इस तरह की डिमेंशिया के लक्षण है वो अर्ली आ सकते हैं। साथ साथ हमें 40-45 के ऊपर फिर कुछ कुछ बीमारियां बहुत कॉमन हो गई आजकल, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अगर उसका हम लोग सही समय पे सही इलाज स्टार्ट कर दें तो भी ये चीजें हमें डिमेंशिया को कम करने में या उसे प्रोग्रेशन को धीमे करने में बहुत मदद करती है। तो जीवन शैली के साथ साथ नशे का सेवन ना करें, और अगर कुछ बीमारी है, शारीरिक बीमारी आपको हो रही है तो उसका उचित और संपूर्ण इलाज कराएं तो हम लोग इस डिमेंशिया का जो प्रोसेस है इसको हम लोग डिले कर सकते हैं, और कुछ कुछ केसेस में इसे बहुत डिले भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं।
1: डिमेंशिया और टेंशन, टेंशन ज्यादा है तो डिमेंशिया का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा?
0: एक्चुअली थोड़ा सा ये है कि टेंशन अगर यंग एज से बहुत अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, तो कहीं ना कहीं टेंशन हमारे ब्रेन सेल्स को तो हैम्पर करेगा ही, उसे डैमेज करेगा ही, तो रिस्क तो बढ़ जाता है। अगर जो अवसाद से लगातार ग्रसित है तो उनमें आगे के एज में, मतलब पोस्ट 60, डिमेंशिया होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अवसाद है, डिप्रेशन है, ये हमारे सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो ब्रेन में है उसको कम करता ही है। तो एक तो वो है, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन या टेंशन में लोग क्योंकि एकाग्र नहीं हो पाते इसलिए वो चीजें भूल जाते हैं, जिसे मैंने टर्म बताया कि सुडो डिमेंशिया कहते हैं, तो वो एक चीज तो होती है।
1: तो एकाग्र मन से यदि हम काम करते हैं और एक साथ बहुत चीजें हम करने लग जाते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और फिर चीजों को हम भूल जा रहे हैं, तो एक समय में एक कार्य किया जाए।
0: कुछ लोगों में होती है ये प्रतिभा कि वो मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीटास्किंग नहीं अगर कर पाते हैं तो उन्हें एकाग्रता से ही काम करना चाहिए, ताकि उनको चीजें याद रहेगी, ये चीजें उनको मतलब अगर बाद में रिकॉल करना है तो याद रह सकती है। मल्टीटास्किंग कुछ लोग कर पाते हैं, ये उनकी एबिलिटी होती है, लेकिन सारे लोगों में ये एबिलिटी नहीं होती है। और मन को कहीं ना कहीं चित्त को प्रसन्न रखना होगा, शांत रखना होगा, जिससे ये चीजें हम लोग डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
1: तो मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, और यदि इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत आप इसका इलाज शुरू कीजिए, और कोई भी चीज, छोटी छोटी चीजें घर में आप रखते हैं तो एकाग्र मन से उस चीजें को रखिए, अपनी चश्मा और कागजात कहीं और रख दिया, छोटी छोटी चीजें को आप भूल जाते हैं, चाबी कहीं और रख दिया, और आप फिर परेशान होने लग जाते हैं। एकाग्र मन से रखेंगे, चित मन से रखेंगे तो चीज आपको सही जगह मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात आज के लिए है कि आप अपने जीवन शैली को सुधारिए, यदि बुरी आदतें हैं आपके साथ उसको आप दूर कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, सह प्राध्यापक केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची, जब इस कार्यक्रम में आए। और मित्रों हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इष्ट मित्रों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित हम भूलने क्यों लगे भेंट वार्ता में। आपने सुना भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर सुजीत प्रसाद रांची, भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। और अब हम कुछ ही पलों अभी रात्रि के 8 बजे

श्रोताओं, रात्रि 8 बजे हम सुनेंगे संसद समीक्षा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:51 और 13 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे।

सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र पर। सभी आपने सुना फिल्म तेजाब के इस गाने को अमित कुमार अनुराधा पौडवाल की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। और अब आइए सुनते हैं फिल्म खामोशी के इस नगमे को हरिहरन अलका याग्निक की आवाज में, मधु सुल्तानपुरी के बोल हैं, जतिन ललित के संगीत।

संगीत का कार्यक्रम जीत पर से ही समाप्त होता है। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार। विविध भारती की प्रसारण सेवा छाया गीत आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रजनीगंधा फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 10:00 अपने स्टूडियो से। फिलहाल सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रात्रि 8:45।

0: समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा

0: तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
3: अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में

0: गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
1: अप टू 23,622 करोड़।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
0: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
3: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता N. रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
2: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद

0: हुआ है। भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: हुकूमत ने आज मुत्तला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है और भारत के पास 60 दिन का खाम तेल, 60 दिन की कुदरती गैस और 45 दिन के लिए एलपीजी का जखीरा मौजूद है। ये बात नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मगरबी एशिया के मुतालिक वुजरा के गैर रस्मी ग्रुप की 5वीं मीटिंग के दौरान बताई गई। मीटिंग के दौरान इस बात की भी इत्तला दी गई कि ज़रे मुबादला के जखायर 703 अरब अमरीकी डॉलर की खातिरखा मकदार में मौजूद हैं। हुकूमत ने बताया कि सप्लाई का इंतजाम बहुत अच्छा रहा है और लोगों को ईंधन और दीगर मसनूआत की खरीदारी के लिए परेशान होने या जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मीटिंग के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अफसरान को हिदायत दी कि जमीनी सतह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपीलों पर अमल आवरी के लिए ठोस इकदाम करें। वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा था कि वो मेट्रो और आवामी आमदोरफ्त का इस्तेमाल करके और कार पुलिंग का तरीका इख्तियार करके पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी करें। उन्होंने शहरियों से यह भी जोर देकर कहा था कि वो एक साल के लिए गैर जरूरी बैरून मुल्क सफर से इज्तनाब करके और मुल्क में ही सियाहत और तकरीबात मनाकर और गैर जरूरी सोने की खरीद से परहेज करके गैर मुल्की जरे मुबादला के जखायर को महफूज रखने में तआवुन दें। वजीर आजम ने किसानों से जोर देकर कहा था कि वो कीमियावी खादों के इस्तेमाल में 50% तक कमी करें और कुदरती काश्तकारी के तरीक़ेकार को अपनाएं, जमीन के रखरखाव में मदद करें, दरामदात पर इन्हिसार में कमी करें और काश्तकारी के लिए डीजल पंप के बजाय शमसी तवानाई से चलने वाले आबपाशी के पंप को वसी पैमाने पर इख्तियार करने की हौसला अफजाई करें। हुकूमत ने कहा कि मुल्क को इसके लिए एक बड़ी लागत का खर्च उठाना पड़ रहा है क्योंकि बैनुल अक्वामी खाम तेल की कीमतें लगातार बहुत ऊंची सतह पर हैं और ईंधन की बचत इस बोझ में कमी कर सकती है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: इस मीटिंग में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा, अश्वनी वैष्णो, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, के राम मोहन नायडू, सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। ये आकाशवाणी है। मरकज ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आयोजिका मिशन देही कानून 2025 VBG रामजी के निफाज को नोटिफाई कर दिया है। ये कानून इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि ये कानून हर माली साल के दौरान 125 दिनों की रोजगार उजरत की गारंटी देते हुए देही भारत को बाइख्तियार बनाएगा। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मुल्क भर में मौजूदा माली साल के लिए नए फ्रेमवर्क को फ़ाल करने की खातिर 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
3: विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून MG नरेगा 2005 की जगह लेगा। नए कानून का मकसद माली साल के दौरान स्टेचुरी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस इजाफी रोजगार गारंटी के जरिए देही तरक्यात की रफ्तार में तेजी, आमदनी के तहफ़ की बेहतर जमानत और देही कुंभों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये कानून उजरत की अदायगियों को बर वक्त बनाने, शफाफ और जवाबदेह अदायगियों पर जोर देता है। साथ ही VBG रामजी कानून में मुकर्र वक्त में काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता फराहम करने की गुंजाइश भी है। विकसित भारत जी रामजी कानून जामे कानूनी फ्रेमवर्क है जो साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर की कौमी विजन को देही रोजगार पैदा करने के साथ साथ हम आहंग करता है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा के लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर कल हलफ लेने की सारी तैयारी हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए कारगुजार वजीर आला और वजीर आला नामजद हेमंत बिस्वा सरमा ने मुत्तला किया कि हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और BJP सदर नितिन नवीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कई मरकजी वुजरा और BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला भी तकरीब में शरीक होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आसाम में NDA की लगातार तीसरी मुद्दत के आगाज की अलामत होगी। مغربی بنگال کی نئی ریاستی حکومت نے آج اپنا کام کاج شروع کر دیا. وزیر اعلیٰ سووندو ادھیکاری نے کابینی اجلاس

0: में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के
1: शार्प मोड़ शुरू होता है, ललिता मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा, एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
2: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार,

सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और

0: सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की ओर भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया काई स्वप्ने विकाई चित, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

0: सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद निहलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद निहलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्धसत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्धसत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्धसत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था।
2: क्या

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

0: सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हटके चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए, हाथ पे जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देखना ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
2: ये सब क्या है चाचा, चलो यहाँ से।
1: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है, किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
2: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
1: रिश्तेदारी का तो खेल है ये सब।
0: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुँचे इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिकुपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले लें। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दुर्वांची जुड़ी, एक

0: होता है उनका कि हम एक नाटक कर रहे हैं उस रोल के लिए, जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
1: अरे ये क्या हो गया ये साले, उन बदमाशों को यही एक दुकान मिले लूटने के लिए।
2: सर, आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
1: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
2: अच्छा अच्छा,
1: हसमुख आ गया। हसमुख हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
3: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
1: पागल हो गया।
3: अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
1: कैसे?
3: मैंने है ना 2 दिन पहले दुकान बेच दिया था।
1: क्या?
3: हाँ।
1: किसको?
3: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था।
1: हाँ।
3: उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
1: कॉन्ग्रेचुलेशन। ए आंडू पांडो।
2: यस सर।
1: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज।
4: अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्या मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
1: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा।
5: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।

कूली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया।

श्रोता आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:03 और 13 सेकंड हो चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की खूबसूरत सी नगमे के साथ। अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक हम बने आपके साथ रजनीगंधा के सफर में।

अभी आपने सुना, आप मुझे अच्छे लगे इस फिल्म के गाने को सोनू निगम की आवाज़ में, राजेश रोशन के संगीत और इब्राहिम अश के बोल थे। भाई सुनते हैं फिल्म आन के गाने को, कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, अनु मलिक के संगीत हैं।

शो तो आप सुन रहे फिल्म संगीतकार कार्यक्रम रजनी गंधा भी आपने सुना फिल्म आप लौट चले किस गाने को उदित नारायण जसविंदर नरूला और अलका याग्निक की आवाज़ में नदीम श्रवण के संगीत और समीर के बोल थे।

आपने सुना फिल्म शहनशाह के इस गाने को लता मंगेशकर मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। अमर उत्पल के संगीत थे आनंद बख्शी के बोल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। और अब आइए सुनते हैं आशा भोसले साधना सरगम के बाद में दीवर के बोल राजेश रोशन के संगीत में फिल्म खून भरी मांग के इस गाने को।

सिंह का कार्यक्रम रजनी गंधा भी आपने सुना। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म गर्लफ्रेंड के इस गाने को परवीन परवेज के बोल थे और डब्बू मलिक के संगीत इसी की गाने के साथ। आइए अब सुनते हैं फिल्म कुली के इस गाने को। आशा भोसले समीर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। और इसी गाने के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है। हमें दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार।

0: कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ देने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।